सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि तदनुसार 31 मई सन 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। सुबह के 6 बजने को है। समाचार कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में

0: सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

समूह स्वरों में आप सुन रहे थे ये पारंपरिक मातृवंदना और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की ये पहली भक्ति रचना जिसे स्वर दिया है पंडित कुमार गंधर्व ने।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में राजेश चौहरी की लिखी ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। और अब कार्यक्रम का ये आखिरी भजन स्वर है सुरेश वाडकर का।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रकाश किरण कार्यक्रम सुनिए। विषय है बौद्ध ग्रंथ दीप निकाय से पाठ।
1: तपस्वी अक्कोधनो होती अनुपनाही, तपस्वी अनुसुकी होती अमच्छरी। सच्चा तपस्वी क्रोध और वैर से रहित होता है। जो तपस्वी सच्चा होता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से मात्सर्य नहीं रखता। अत्त दीपा भिक्खवे विहरथ अत्त सरणा अनन्य सरणा, यम अकुशलम तम अभिनिवेज्ये यासि, यम अकुशलम तम समादायवत्ति यासि, इदम खोतात तम अरियम चक्कवत्तिवतम। हे भिक्षुओं, आत्मदीप होकर, स्वयं प्रकाश होकर और आत्मसरण होकर यानी स्वावलंबी होकर विहार करो। किसी दूसरों के भरोसे मत रहो। जो बुराई है उसका त्याग करो और जो भलाई है उसे स्वीकार करो। यही सबसे श्रेष्ठ आर्य व्रत है। अधनानम धने अननुपदीयमाने दालिद्दिदयम वेपुल्लमगमासी, दालिद्दिदये वेपुल्लम गते अदिन्नादानम वेपुल्लमगमासी। निर्धनों को धन दिए जाने से दरिद्रता बहुत बढ़ गई और दरिद्रता के बढ़ जाने से चोरी बहुत बढ़ गई। धम्मो वसेठो जने तस्मी दिठे चेव धम्मे अभिसंपरायंच। धर्म ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस जन्म में भी और परलोक में भी वह हमारा हितकारी है। पाणातिपातो अदिन्नादानम मुसावादो च उच्यति परदार गमनम चेव नपसंसंति पंडिताः। जीव हिंसा, चोरी, झूठ और परस्त्री गमन ये सब कुत्सित कर्म हैं। इन कर्मों की पंडित लोग कभी प्रशंसा नहीं करते। छन्दागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति, दोषागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति, मोहागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति, भयागतिं गच्छन्तो पापकम्मं करोति। मनुष्य पाप कर्म जो करता है वो राग के वश होकर करता है, द्वेष के वश होकर करता है, मोह के वशीभूत होकर करता है और भय के वशीभूत होकर करता है। छंदा दोषा भया मोहा यो धम्मं नातिवत्तति आपूरति यसो तस्य सुखपक्खे वचंदिमा। जो व्यक्ति राग को, द्वेष को, भय को और मोह को छोड़कर धर्म का पालन करता है, धर्म का अतिक्रमण नहीं करता, उसकी कीर्ति उसी प्रकार बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणें। जूत पमादठानान योगो भोगानम अपाय मुखम, पाप मित्तान योगो भोगानम अपाय मुखम, आलस्यान योगो भोगानम अपाय मुखम। जुए आदि खेलना, प्रमाद स्थानों का सेवन ऐश्वर्य के विनाश का कारण है। बुरे मित्रों की संगति यह भी ऐश्वर्य के विनाश की हेतु है और आलस्य में पड़े रहना भी ऐश्वर्य को नष्ट करता है। संदिठिका धनजानी कलहप्पवर्धनो रोगानम आयतनम अकित्ति संजननी कोपीन निदंसनी पैयाय दुब्बलीकरणी। मद्यपान तत्काल धन की हानि करता है, कलह को बढ़ाता है, रोगों का घर है, अपयश को पैदा करता है, लज्जा को नष्ट करता है और बुद्धि को दुर्बल बनाता है।
0: कार्यक्रम प्रकाश किरण में आप सुन रहे थे बौद्ध ग्रंथ दीप निकाय से पाठ। स्वर था श्री दामोदर शास्त्री का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर हैं वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर के।

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वन वासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्राम वधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेह सिक्त वचन से श्री राम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुग्ध हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा तो ईर्ष्यावश इन्हें वन में छिपाने की योजना बना ली।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में स्वर थे वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांव करके। मीडियम में ऊपर ये आकाशवाणी जबलपुर है। अब सुनिए कृषि समय की, विषय है लाभकारी कटहल।
1: किसान भैया हरो, कटहल के पौधों को सभी प्रकार की भूमि में लगाओ जा सकत है। मनो अच्छी बढ़वार और पैदावार की दृष्टि से गहरी उपजाऊ दोमट भूमि जी को जल निकास अच्छो होवे उपयुक्त मानी जात है। ऐसे स्थान जहां जल को स्तर अचानक बढ़ जात है उपयुक्त क्षेत्र नहीं माने जाते हैं। जलवायु की बात करें तो कटहल को गर्म और नम जलवायु की जरूरत पड़त है। कटहल के पौधा पाले और ज्यादा ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं। कटहल के पौधों को गर्म हवाओं से सोई क्षति हो जात है। सूर्य को प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलवे पे उत्पादन अच्छो अपन को प्राप्त होत है। कटहल पे परागित फल होवे के संगे संगे प्रवर्धन मुख्य रूप से बीज द्वारा करो जात है। रोपणी की तैयारी के लाने आप जानबो चाहत हुई तो कटहल को उद्यान लगावे के लाने चयनित स्थान पे मई माह में रेखांकन करखो 10 मीटर कतार से कतार और 10 मीटर पौधा से पौधा की दूरी पे 1 मीटर लंबे चौड़े और गहरे आकार में गड्ढों के खोद खो कम से कम 15 से 20 दिन के लाने खुलो छोड़ दो चाहिए। ऐसो करबे से सूर्य की तेज धूप से हानिकारक जुन कीट होते हैं या रोगाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। मई के अंतिम सप्ताह या फिर जून के पहले सप्ताह में इन गड्ढों को खेत की मिट्टी और गोबर की सड़ी भई खाद के सम्मिश्रण के संगे 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 500 ग्राम म्यूरेट या पोटास और 50 ग्राम चूर्ण मिलाखो भर दो चाहिए। प्रति गड्ढा में 3 किलो नीम की खली डालबो जरूरी रहत है जिसे अपन खो ज्यादातर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होत है। पौधरोपण को उत्तम जो समय है वर्षा ऋतु को मानो जात है, माने जुलाई अगस्त सितंबर महीना में रोपण के लाने अच्छे महीना माने जाते हैं। पौधों को वर्षा ऋतु के आरंभ में लगा दो चाहिए और कटहल के पौधा प्रारंभिक अवस्था में अधिक मरत हैं। काय के भैया स्थानांतरण और रोपण के दौरान जड़ों को हानि पहुंचत है, इसे वे क्षतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसे कटहल के बीजों को उचित स्थान पर तैयार करखो गड्ढों में 2 या 3 बीज खो बो दो जावे तो ज्यादा अच्छो मानो जात है और पौधा के विकसित होवे पे स्वस्थ पौधों को छोड़ खे शेष को निकाल दो जात है। पौध रोपण के बाद मिट्टी खो दाब दो चाहिए। अब बात आउत है खाद और उर्वरक देवे की, तो संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक दे जाए तो निश्चित रूप से पौधों की अच्छी बढ़वार और अच्छो उत्पादन प्राप्त करो जा सकत है और पौधों की उम्र के अनुसार खाद और उर्वरक को उपयोग अपन को करो चाहिए। खाद और उर्वरक देवे को जो तरीका है तो गोबर की खाद स्फोर और पोटाश की पूरी और नत्रजन की आधी मात्रा जून महीना के अंतिम सप्ताह या फिर वर्षा शुरू होवे के पहलू मिट्टी में उम्दा तरीका से डालखो मिला दो चाहिए। खाद और उर्वरकों को तना से दूर शाखाओं के फैलाव के ठीक नीचे दो चाहिए। नत्रजन की शेष आधी मात्रा फरवरी और मार्च के महीना में दो चाहिए। किसान भैयारो, ई में जरूरी होत है के तेज धूप से बचाव करबे के लाने पौधों को छाया देवो जरूरी मानो जात है। छाया देवे के लाने पौधों के चारों तरफ बांस की खूंटियों को गाड़खे उके ऊपर घास की झोपड़ी बना दी जात है। पौधों को छाया कर समय ई बात को विशेष ध्यान रखे के प्रातःकाल माने सवेरे सवेरे की धूप पौधों को लग सके। सिंचाई और उमे अंतरशस्य जोन काम करने आउत हैं उनके बारे में सोई आप जानबो चाहत हुई हो तो कटहल एक उम्दा छायादार वृक्ष है और जो सूखे की स्थिति सहन नहीं कर सकते आए, इसे गर्मी के समय 15 दिन के अंतर से सिंचाई करो चाहिए। शीत ऋतु में 1 महीना के अंतर से सिंचाई करो चाहिए और 2 से 3 वर्ष की उम्र के जब ये पौधा हो जाए तो गर्मी के टाइम पे 7 दिनों और ठंड के टाइम पे 15 दिनों के अंतराल से सिंचाई करो चाहिए। भूमि के प्रकार के अनुसार सिंचाई को अंतराल कम और ज्यादा करो जा सकत है।
0: लाभकारी कटहल कृषि सामयिकी में आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओ, आज 31 जुलाई है, यानी महीने का आखिरी रविवार, और आखिरी रविवार होता है मन की बात सुनने का दिन। आज 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबसे साझा करेंगे अपने मन की बात। इस प्रसारण को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:20 पर होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। 8:30 पर आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। 9 बजे होता है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रस्तार। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा सुंदरलाल विश्वकर्मा और सुग्रीव चक्रवर्ती के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर सुनिएगा वंदे मातरम गौरव गान की 1.5 सदी। 10:10 पर समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और 10:20 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

बजकर 30 मिनट पर बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की होगी। दूसरी सभा में

0: हैं शाम 6:30 पर। शाम 7:21 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी देंगे श्री हेमंत सोलंकी। रात 8:00 सुर्खियों में और 8:15 पर डगर विकास की, ये दोनों कार्यक्रम हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर अनुगूंज और इसके साथ ही रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये तीनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। एक बार फिर आपको याद दिला दें, आज मन की बात सुनने का दिन है। इस प्रसारण में 11:00 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबसे साझा करेंगे अपने मन की बात। इस प्रसारण को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:00 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34th संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह श्री लाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधिमन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लैङ्गः 5-दिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक ISI मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः अष्टौ अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों, एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. Earlier, President of Myanmar yesterday arrived at Bodh Gaya in Bihar on a five-day visit to India and prayed at Mahabodhi Temple. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing last evening. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st of October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off-season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs and strengthen the competitiveness of Indian textiles. The ministry emphasized that the measure will safeguard the interests of the farmers and ensure market stability. Delhi Police Special Cell has arrested eight accused working at the behest of Park ISI Mumbai Underworld Network. Addressing a press conference, Special CP of Delhi Police Special Cell Anil Shukla said that the accused were tasked to attack vital installations and security personnel in Delhi. He said that arms and explosives have been recovered from their possession. Mr. Shukla informed that the accused were operating under directions of cross-border handlers and they were arrested from Delhi, Maharashtra and Pune. Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu has hailed the launching of Sky Car system at IGI Airport in New Delhi. The

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान। और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू, 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉक्टर यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता कई द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
3: हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगर मालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पुल का नाम कैप्टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर होगा। श्री शुक्ल ने तरणताल में नए स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस प्रतियोगिता से नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और देश व प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगी। अब बात मौसम की। नौ दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो सकती है। खंडवा जिले में बादल छाए रहने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी

इससे राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में दो महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में चार लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिवरम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम के चौथे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई। और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को चमन सालवार का नमस्कार। दोस्तों, एक दो दिनों से मौसम बड़ा राहत भरा चल रहा है और ठंडी हवाएं भी चली अभी तो, और देखा जाए तो हर बार नौतपा में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और बड़े बुज़ुर्ग ये बोलते हैं कि नौतपा में अगर बारिश हो जाए तो फिर बारिश के मौसम में बारिश के आसार थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये बुज़ुर्गों के अनुभव की बात है। सेहत से जुड़ी एक बात मेरे जहन में आ रही है कि हर जलती सिगरेट या बीड़ी के एक ओर होती है आग और दूसरी ओर एक नासमझ व्यक्ति जिसे ना अपनी चिंता होती है ना अपनों की फिक्र।

हर फिक्र को धुएं में जोड़ाने वाले लोग हैं वो ये भूल जाते हैं कि एक दौर ऐसा भी आने वाला होता है या दस्तक दे रहा होता है कि उनकी बाकी ज़िंदगी सिर्फ फिक्र और चिंता में ही गुजरने वाली होती है। आज 31 मई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस साल की जो थीम है वो है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। आमतौर पर तंबाकू का सेवन करने वाले लोग, चाहे वो गुटखे के रूप में सेवन करें या धूम्रपान के रूप में सेवन करें, अपने उनके तर्क होते हैं कि छूटती नहीं है, दैनिक क्रियाओं में बड़ी मुश्किल होती है और ये जो लत है वो निकोटीन की वजह से होती है और इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की निसंदेह कमज़ोर होती है, क्योंकि अगर एक बार मन में पक्के तौर पर ये दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि हमें धूम्रपान छोड़ना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको धूम्रपान करवा नहीं सकती है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यूं तो हमारे आसपास आमतौर पर धूम्रपान करने वाले लोग नज़र आ जाते हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा धूम्रपान कहाँ होता है या कहाँ के लोग करते हैं, तो वो शहर है कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि कोलकाता में 56.6% लोग धूम्रपान करते हैं, जो देश में सबसे अधिक दर है। कोलकाता में 82% पुरुष और 23.5% महिलाएं धूम्रपान करती हैं। बीड़ी पीने वालों की सबसे अधिक संख्या उत्तराखंड में है। तंबाकू से नुकसान की बात करें तो एक बड़ी लिस्ट खोलना पड़ेगी हमें, हर तरह के नुकसान होते हैं। और एक राहत भरा तथ्य यह है कि धूम्रपान करने वाला व्यक्ति अगर पूरी तरह से धूम्रपान छोड़ता है तो उसके नुकसान से उबरने की दर भी बहुत ज़्यादा होती है, वो तेज़ी से उबरता है और बहुत अच्छी सेहत की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए एक बार में दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि धूम्रपान हमें छोड़ना है। वैसे ये शगल बहुत पुराना है और कैसे शुरू हो गया ये खोज का विषय है। बहरहाल हम सारे लोग ये अहद करें कि अव्वल तो खुद धूम्रपान ना करें और अगर आसपास कोई धूम्रपान करता है तो उसे धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित ज़रूर करें।

0: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
1: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और दोस्तों, अब बच्चों की बात। जितने बड़े लोग हैं और मध्य वय के जो लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, आजकल के बच्चों से अपने बचपन की तुलना करें तो हम सबको लगेगा कि हम आज के बच्चों से कितने पीछे थे। आजकल के बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं, जो स्मार्टफोन से ऐसे खेलते हैं कि हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। स्मार्टफोन के न जाने कितने ऐसे फंक्शन हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा बच्चा यूं उंगलियां चलाता है कि ऐसा लगता है कि हम तो कितने पीछे हैं। और माता पिता भी, बच्चे जब उधम करते हैं, घर में शैतानियाँ करते हैं, तो मोबाइल बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं ताकि घर में थोड़ी शांति हो सके और वो कामकाज के लिए समय निकाल सकें। और ये देखा जाए तो एक बहुत ही गंभीर गलती माता पिता करते हैं। वो बच्चे जिन्हें खिलौनों से खेलना है और खिलौने से खेलने की उनकी उम्र है, अगर मोबाइल से खेल रहे हैं तो यकीन मानिए गंभीर मानसिक चुनौतियों से ऐसे बच्चे भविष्य में जूझने वाले हैं। और विशेषज्ञ और डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को किसी भी तरह की स्क्रीन से हमेशा दूर रखना चाहिए, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो या कंप्यूटर की स्क्रीन हो या किसी भी तरह की स्क्रीन हो। बच्चे खिलौनों से खेलते ही अच्छे लगते हैं और कुछ बच्चे अपने समय से आगे होते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए एक सूचना है कि क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है। भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है ऐसे बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, आज रानी अहिल्याबाई की 301वीं जयंती है। वो मालवा साम्राज्य की महान न्यायप्रिय और दूरदर्शी महारानी थी, जिन्होंने पूरे भारत में अनेक मंदिरों और जन कल्याणकारी संस्थाओं का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया। उन्हें लोक माता के रूप में पूजा जाता है। उनके द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और गया में विष्णुपाद मंदिर सहित देश भर में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण और मरम्मत करवाई थी। उन्होंने अपने न्यायपूर्ण शासन और विधवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कार्य किए थे।

दोस्तों, दुनिया की सबसे चंचल और चपल शय क्या है? वो जो समय से भी आगे भागता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा मन, जिसमें हर समय विचारों का झंझावात चलता रहता है, कुछ इस तरह की सोने के बाद भी मन आराम नहीं करता और विचारों की उथल पुथल मन में चलती रहती है, जो कई बार सपनों के रूप में हमारे सामने आती है। सब कुछ मन करता है, सारा कारोबार मन करता है, लेकिन बदनाम फालतू में दिल होता है। दिल तो चुपचाप अपना काम करता है और आम तौर पर दिल को आराम के पल बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और दिल जब आराम के मूड में आ जाता है तो वो हम सबकी चिंता का विषय भी बन जाता है। हमसे उम्मीद ये की जाती है कि सबकी सुने, लेकिन अपने मन की पहले सुने, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात भी सुनते रहें, जो कि साल हर महीने वो आखिरी रविवार को हमसे करते हैं। और आज वो रविवार है। आज 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबसे साझा करेंगे अपने मन की बात। इस प्रसारण को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अलावा विविध भारती से भी ये प्रसारण किया जाएगा। तो सुनना न भूलें प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात।

मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म चित्रलेखा फिल्म का ये गाना, जिसे साहिर लुधियानवी जैसे शायर ने विशुद्ध हिंदी शब्दों में रचा, और रोशन जिन्होंने बहुत कम संगीत दिया लेकिन सारे कालजयी गाने रचे, उन्होंने राग यमन कल्याण में इस गाने को रचा। और एक जानकारी आपके लिए ये कि एक संस्था ने सर्वेक्षण किया था जिसमें 100 साल के कालजयी गीतों में इस गाने को सर्वश्रेष्ठ गीत माना गया। कितनी हैरत की बात है, बहुत कम वाद्यों में रोशन ने इस गाने को रचा, लेकिन इसका प्रभाव इतना कालजयी है जो आज भी हमें अभिभूत कर देता है।

हम सारे लोग जिंदगी की परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, बस फर्क यह है कि सबके प्रश्न पत्र भी अलग अलग हैं और सवाल भी अलग अलग।

और अब इस कार्यक्रम से अपने दोस्त चमन सालवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा

0: पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्रीलाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन द अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट

0: आने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गिब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में

0: भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
2: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar U Min Aung Hlaing arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs.

0: कठपुतली फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम का अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाज में है। समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

झूम बराबर झूम, इस फिल्म का गाना आपने सुना महालक्ष्मी अय्यर और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। आकाशवाणी जबलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

रहना है तेरे दिल में। इस फिल्म का गीत आपने सुना शान की आवाज़ में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। आपको याद दिला दें, आज 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबसे साझा करेंगे अपने मन की बात। इस प्रसारण को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मीडियम वेव पर ही आकाशवाणी जबलपुर है। वक्त हो रहा है न्यूज हेडलाइंस का। हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोहम का दौरा किया। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मातरम के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू

0: तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। नौतपा के बीच राज्य में मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 9 बजे हैं, अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं सुंदरलाल विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत।

कार्यक्रम लोक रस्तार में अभी आप सुन रहे थे सुंदरलाल विश्वकर्मा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुग्रीव चक्रवर्ती के गाए बुंदेली लोकगीत।

सुग्रीव चक्रवर्ती और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक दस्तार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर यह है आकाशवाणी जबलपुर। 9:30 होने को है सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान। अब हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में हाजिर आया तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। साथियों, धर्माऊ महीनो हली रहियो आहे, जंहिंखे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बि सॾिजे थो। शास्त्रनि मूजिबि इन महीने में विर्त, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन ऐं ध्यानु करण सां सभिनी ॾुखनि जो नास थींदो आहे। भगवद गीता, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा ॿुधण जो बि अद्भुत फल मिलंदो आहे। अचो त अॼु कार्यक्रम जी शुरूआति बि असीं परमात्मा जे ध्यान सां कयूं ऐं पंहिंजे इष्ट देव साईं झूलेलाल जो ई भॼन ॿुधूं।

दोस्तों 31 मई 1725 में महाराष्ट्र जे चौंडी गोठ में जन्म थियो हो अहिल्या बाई जो। अहिल्या बाई जो संग मालवा जे राजा मल्हार राव होलकर जे पुट खांडेराव होलकर सा थियो हो। 1754 में पतिय जी लड़ाई में मौत खां पोए अहिल्या बाई के सहुरे मल्हार राव जो मार्गदर्शन मिलियो ए 1767 में मल्हार राव जी मौत खां पोए हुन मालवा राज जी कमान झली। लोकमाता अहिल्या बाई होलकर सोनहरे अखरन में लिखियल एक अहड़ो नालो आहे जै राजपाट के पेंजे भोग जो वसीलो न पर शेवा जो साधन बणायो। उन दौर में जड़ी केतरियों ही जायफाओं घर जी चार दीवारी में सिमकियल हुयों तड़ी अहिल्या बाई न रुगो मालवा साम्राज्य जी वागूं झलियों पर पेंजी प्रशासनिक सूझबूझ सा राज के खुशहाली जी चोट ते पहुंचाए। संदस दरबार न्याय जो स्थान हो। तवारी गवाह आहे त कानून तोड़न ते हुन पेंजे माइटन के भी सजा देण में हबक न कई। उनन जी आर्थिक दूरदर्शिता जी शाहिदी इन गाल्ह मां मिले थी जो उनन महेश्वर के पेंजी राजधानी बनायो। इन सा उता जे जुलाहन के आसरो मिलियो ए महेश्वरी साड़ी जो कम हजारे कुटुंबन जे अटे लटे जो जरियो बणियो। अहिल्या बाई ज़ाइफाउनि लाइ बि केतिरा ई कम कयाई जीअं ज़ालुनि खे जागीर में हक़ु ॾियारणु बेवा ज़ालुनि खे ॿार गोद वठण जो हक़ु ॾियारणु वग़ैरह। अहिल्या बाई मालवा जी राणी हुई पर संदसि दिलि सॼे भारत लाइ धड़कंदी हुई। परॾेही हमलावरनि हथां ठाहियल केतिरनि ही मंदरनि धर्मशालाउनि जो हुन जीर्णोद्धार करायो। हुन तलवार जे ज़ोर ते न पर त्याग ऐं पुनर्निर्माण ज़रिए भारत जे नक्शे ते हिकु अमिट छाप छॾी। संदसि जीवन अॼु बि सभिनी लाइ हिकु मिसाल आहे। अॼु अहिल्या बाई होलकर जयंती जे ॾींहुं उन्हनि जे चरणनि में असांजो नमन आहे। साथियों इन्हीअ सां गॾु ई अॼु 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस बि आहे। ही ॾींहुं मल्हाइण जो उद्देश माण्हुनि में तंबाकू सां थियण वारनि जानलेवा नुक़सान बाबति सुजाॻी आणणु ऐं तंबाकू छॾण लाइ प्रेरित करणु आहे। तंबाकू जो सेवन अॼु कंहिं वैश्विक महामारी खां घटि न आहे। बीड़ी सिगरेट गुटका ए खैनी जड़ी शयों रुगो इंसान जे शरीर के ही नुकसान न थियो कन पर केतरन ही खिलंदड़ कुटुंबन के भी तबाह कंदियो आहिन। इन गंभीर मसैले डाउं ध्यान छिकण लाए विश्व स्वास्थ्य संगठन माना WHO पारा साल 1987 में ही डी मल्हाण जी शुरुआत कई वई। तंबाकू में निकोटीन ए बया नुकसान कंदड़ रसायन होंदा आहिन जिन सा कैंसर दिल ऐं फेफड़नि जी बीमारियूं थियण जो ख़तरो रहंदो आहे। ख़ासि ॻाल्हि आहे त जॾहिं को माण्हू धूम्रपान कंदो आहे त हू रुगो पाण खे न पर पंहिंजे आसे पासे वेठल हर माण्हूअ खे ख़तरे में थो विझे जंहिंखे पैसिव स्मोकिंग चइजे थो। साथियों तंबाकू निषेध हिकु ॾींहं जो न पर सॼे जीवन जो संकल्प हुअणु खपे। अचो त असीं सभु इहा पह कयूं त न त तंबाकू वापराईंदासीं ऐं न ही पंहिंजनि खे वापराइणु ॾींदासीं। तंबाकू खे न ऐं ज़िंदगीअ खे हा चवंदासीं ऐं हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ छो त असांजे नंढड़नि नंढड़नि ॿारनि जी स्कूल जी छुटियूं हली रहियो आहिनि त पेश आहे भगवंती नावाणी ऐं साथियुनि जी आवाज़ में ॿारनि जो ही गीत।

दोस्तों हाणे वक्त आहे अॼु जी ॿी ज़रूरी ॼाण जो। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मल्हायो वेंदो आहे। कुदरत असांखे छा न ॾिनो आहे, वहंदा झरणा, झलंदा झंग, नीरो उभ ऐं चहकंदड़ पखी। पर आधुनिकरण जे इन दौर ऐं तरक़ीअ जी अंधी भज भजा में असीं कुदरत जे इन सींगार खे विञाए वेठा आहियूं। प्रदूषण मार कई आहे, हवा में वहंदो धुओं ऐं नदियुनि में वहंदो किचरो धरतीअ जा ज़ख़्म बणिजी पिया आहिनि। ग्लोबल वॉर्मिंग ऐं बदिलियल मुंद इन्हीअ ॻाल्हि जी शाहिदी आहे त जेकर असां हाणे बि न संभलियासीं त आईंदह भयानक थी सघे थो। असां सभई गर्मीअ जी मार ॾिसूं ई पिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जा ही अखर आहिनि त कुदरत वटि हर माण्हूअ जी ज़रूरत पूरी करण लाइ सभु कुझु आहे, पर लालच पूरी करण लाइ न आहे। दोस्तों असांखे इहो समुझणो पवंदो त असीं कुदरत जा मालिक न आहियूं ऐं पर्यावरण जी सार संभाल कंहिं सरकारी योजना जी मोहताज न, पर असांजी आदत हुअणु घुरिजे। पर्यावरण दिवस ते असीं रुगो भाषण ॾेई या ॿुधी वेही न रहूं, पर पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि तब्दीलियूं आणियूं। वण पोखियूं ऐं उन्हनि जी संभाल कयूं। प्लास्टिक घटि में घटि वापरायूं, पाणी न विञायूं, अपसाइक्लिंग ऐं रीसाइक्लिंग ॾांहुं रुख कयूं। नंढा नंढा क़दम वॾी क्रांति आणे सघूं।

0: ज्ञान था, ऐसो जलाम सुफलाम जो सुपणो सच थी सके थो। दोस्तों, इन्हीं मौजूअ ते विशेष ॼाण ॾियण लाइ आकाशवाणी भोपाल में अॼु असां सां जुड़ियल आहिनि वार्ताकार सरिता खयानी जी। अचो त ॿुधूं था उन्हनि खां इहा विशेष वार्ता।
1: जय झूलेलाल भाउरो ऐं भेनरो, मां सरिता खयानी तव्हां सां रूबरू आहियां। अॼु असां चर्चा कंदासीं पर्यावरण ते। त सभिनी खां पहिरियों, पर्यावरण जो मतिलब छा आहे? पर्यावरण जो मतिलब आहे परी प्लस आवरण। परीअ जो मतिलब हूंदो आहे पृथ्वी, ऐं आवरण जेको सॼी पृथ्वीअ जे सभिनी पासनि खां घेरे रहियो आहे उहो आहे आवरण। सवली भाषा में चइजे त पृथ्वीअ ते जो बि मौजूद आहे उहो ई पर्यावरण आहे। असांजे आसे पासे जे वातावरण खे ही पर्यावरण चइबो आहे। पर्यावरण में जैविक ऐं अजैविक सभई ईंदा आहिनि। जैविक माना जिन में जान आहे, जेके बि जीवित आहिनि, जीअं त वण टण, पखी, कीड़ा माकोड़ा, जानवर ऐं असां माण्हू बि ईंदा आहियूं। अजैविक में उहे ईंदा आहिनि जेके जीवित न आहिनि, माना नदियूं, पहाड़, हवा, पाणी, पृथ्वी, इहे सभु। पर्यावरण ठहंदो आहे चार मंडलनि सां: जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल। इन सभिनी खे पर्यावरण चइबो आहे। जल मंडल में जल, जलीय पौधा, जलीय जीव जंतु ईंदा आहिनि। वायुमंडल में घणेई प्रकारनि जी गैसूं हूंदियूं आहिनि, धूल जा नंढा नंढा कण, पखी, इहे सभई ईंदा आहिनि। स्थल मंडल में इंसाननि जी ठहियल शयूं ऐं सभई स्थल जी प्राकृतिक शयूं ईंदियूं आहिनि। ऐं जैव मंडल में सभई जीवित ईंदा आहिनि। जंहिं जॻहि ते पाणी, हवा, ज़मीन, इहे सभु हूंदा आहिनि, उते ई जैव मंडल हूंदो आहे। हिननि सभिनी मंडलनि खे मिलाए करे ठहंदो आहे पर्यावरण। पर्यावरण खे असां ॿिनि भाॻनि में वंडी सघंदा आहियूं: प्राकृतिक, यानी जेके भॻवान ठाहिया आहिनि, पाणी, हवा, जीव जंतु, वण, पृथ्वी, पहाड़, नदियूं, समुंड ऐं अलाए छा। ॿियो आहे अप्राकृतिक शयूं, जिन खे इंसान ठाहियो आहे, जीअं रोड, मकान, गाॾियूं, हवाई जहाज ऐं ॿिए बि घणेई शयूं। पर्यावरण जो असांजे जीवन में ॾाढो महत्व आहे। असांखे पर्यावरण सां ऑक्सीजन, पाणी, फल, अनाज, खाधे जी हर शइ मिलंदी आहे। असांजे जीवन जे लाइ ज़रूरी आहे शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, प्रकृतिअ सां मिलण वारा फल, अनाज। पर अफ़सोस, पर्यावरण में प्रदूषण फैलिजी रहियो आहे। आख़िर इहो प्रदूषण अचे किथां थो? इहो सभु असां करे रहिया आहियूं। हा, तव्हां सही ॿुधो, इहो सभु असां करे रहिया आहियूं। जंगलनि जे वणनि खे कटे रहिया आहियूं। उहे वण जेके असां खे साह खणण जे लाइ ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि ऐं असां खे नुक़सान पहुचाइण वारी कार्बन डाइऑक्साइड खे एब्ज़ॉर्ब कंदा आहिनि। इहो ई न, बारिश जे मौसम में बोड अचण खे रोकींदा आहिनि। फैक्ट्रीज़ जा निकरण वारो धुओं ऐं ज़हरीली गैस हवा में मिली रही आहे, हवा खे प्रदूषित करे रही आहे। असां रुगो वायुमंडल खे ई प्रदूषित न करे रहिया आहियूं, बल्कि जल मंडल खे बि प्रदूषित करे रहिया आहियूं। जल असांजे शरीर जो 70% हिसो आहे। खाधे जे बिना इंसान वरी बि रही सघे थो, पर जल जे बिना हिकु ॾींहुं बि नथो रही सघे। पर असांजी ठहियल फैक्ट्रीज़, केमिकल्स मिलियल पाणी नदियुनि में विझी करे नदियुनि जे जल खे प्रदूषित करे रहिया आहिनि। स्थल मंडल बि प्रदूषण सां बचियल कोन्हे। ज़मीन में घणेई केमिकल्स ऐं पॉलीथिन विझी करे असां ज़मीन खे प्रदूषित करे रहिया आहियूं। पर्यावरण खे संरक्षण जी ज़रूरत आहे, इहो सभिनी खां पहिरियों महसूसु कयो वियो 1972 में। स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972 में वैश्विक स्तर ते हिकड़ो सम्मेलन रखियो वियो। हिन सम्मेलन में घणेई देशनि भाग वरितो ऐं पर्यावरण संरक्षण जी मुहिम हलायऊं। ही सम्मेलन 5 जून 1972 जो थियो। इन करे ॿिए साल 5 जून 1973 खां 5 जून खे पर्यावरण दिवस जे रूप में मल्हाइण जी घोषणा कई वई। स्टॉकहोम जे सम्मेलन खां 20 वर्ष खां पोइ 1992 में रियो में पृथ्वी सम्मेलन थियो, जंहिंमें एजेंडा एकीय रखिया विया। इन करे इन सम्मेलन के रियो एकीय भी चयो वेंदो आहे, जैमें असांजे भविष्य के बचाइण जे लाए छा-छा उपाय कजन, इयो विचार कयो वियो। इन सम्मेलन में ब संगठन ठया, हिकड़ो UNFCCC, बियो कॉप। कॉप जी बैठक हर साल थींदी आहे। इन बैठक में पर्यावरण के किए बचायो वञे, इन्हीं जी चर्चा भी थींदी आहे, ऐं बचाव जा उपाय ऐं कारण, ये सभी विचार कया वेंदा आहिनि, ऐं उन्हनि ते कीअं अमल कजे इहो सोचियो वेंदो आहे। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थी ओज़ोन परत जे बारे में। ओज़ोन जी परत पृथ्वीअ खे सिज जी पराबैंगनी किरणनि खां बचाईंदी आहे। पराबैंगनी किरणनि खे एब्ज़ॉर्ब करे वठंदी आहे, ऐं हीअ पराबैंगनी किरणूं असांजे लाइ तमामु नुक़सान वारियूं आहिनि। पर 16 सेप्टेम्बर 1987 में मॉन्ट्रियल में हिकड़ो सम्मेलन थियो, हिन में सभिनी खां पहिरियों इहो रखियो वियो कि ओज़ोन जी परत जेका आहे असांजी रक्षा कंदी आहे उहा सन्नी थींदी थी वञे, हुन में टुंग थी विया आहिनि, ऐं उन खे रोकण जे लाइ छा करणु घुर्जे इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ध्यानु ॾिनो वियो। ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण सां ग्लोबल वार्मिंग वधी रही आहे। ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण जो कारण कुझु नुक़सान पहुचाइण वारी गैसेस आहिनि, उन में ख़ासि करे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आहे। ओज़ोन जी परत सां रिएक्ट करे इहे ज़हरीली गैसूं उन खे सन्हो कंदियूं वेंदियूं आहिनि, ऐं ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण सां ग्लोबल वार्मिंग वधी रही आहे। इहे जेके अल्ट्रावॉयलेट किरणूं आहिनि जेको ओज़ोन जी परत उन खे एब्ज़ॉर्ब करे वठंदी आहे, उहे असांजे लाइ तमामु ख़तरनाक आहिनि। उन्हनि सां त्वचा जो कैंसर, त्वचा जी बीमारियूं, मोतियाबिंद, इहे सभु वधी सघनि था। यूवी किरण जिन खे ओज़ोन परत एब्ज़ॉर्ब कंदी आहे, जीव जंतु ऐं पौधनि ते बि असर करे सघे थी। पर्यावरण जे संरक्षण जी कोशिश सॼे विश्व में थी रही आहे। असांजी सरकार बि संरक्षण जे लाइ कम करे रही आहे, पर रुगो सरकार ही न, असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असां पर्यावरण खे शुद्ध रखण जे लाइ कोशिश कयूं। असां सभई कोशिश कयूं त कुझु वण लॻायूं ऐं पॉलीथिन जो उपयोग करणु बंदि कयूं। असां सभई पर्यावरण जो संरक्षण कंदासीं त पर्यावरण शुद्ध रहंदो। असां पंहिंजे जनम ॾींहं ते हिकु पौधो ज़रूर लॻायूं। जेके शादीशुदा आहिनि उहे पंहिंजी शादीअ जी वर्षगांठ ते बि पौधो लॻाइनि। रुगो पौधो लॻाइणो कोन्हे, उन जो ध्यानु बि रखणो आहे, जीअं इहे पौधा वॾा थी करे पर्यावरण खे प्रदूषण सां बचाइनि। सरकार पंहिंजी कोशिश करे रही आहे, पर असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असां पर्यावरण खे बचायूं ऐं स्वस्थ जीवन जीयूं। पर्यावरण स्वच्छ हूंदो त असांजो जीवन बि स्वस्थ हूंदो।
0: महिरबानी सरिता जी हिन जानकारी लाइ। ऐं दोस्तो, हाणे हलंदे हलंदे अचो त कार्यक्रम में मज़ो था माणियूं कमला केसवानी ऐं कला हज़ारी जी आवाज़ में हिन सुहिणे गीत जो।

दोस्तों, हिन गीत सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि समाप्त थो थिए। उमेद आहे त तव्हांखे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजिबो, सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव पर अब हैं आप आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के साथ। आपको बता दें, आज मन की बात सुनने का दिन है। इस प्रसारण में 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबसे साझा करेंगे अपने मन की बात। इस प्रसारण को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। नौतपा के अंतिम दौर में नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जांच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयां और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ। गेहूं बेचने वाले किसानों को 1,507 करोड़ 64 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947 करोड़ 51 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगुआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों ने प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले IEC अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में ये संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जन संवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जन हानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। स्थानीय निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में 1 माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों और आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है
2: और मीडियम वेव पर अब है आप आकाशवाणी जबलपुर के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

किसी विविध रंगी गुलदस्ते जैसा है हमारा देश, जिसका हर एक फूल रंग और खुशबू में अपने आप में खास और दूसरों से अलग है। उसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। बोली, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज अलग, फिर भी सबकी पहचान एक, यानी भारतीय। और भारतीयता का यही जज्बा हमारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। वास्तव में नदियाँ, सागर, हरे भरे वन, रेगिस्तान और खनिज संपदा किसी देश का भौतिक स्वरूप होते हैं। उसकी सबसे बड़ी कसौटी होती है मानवीय मूल्यों से जुड़ी परंपराएं, जो किसी देश को सबसे अलग और खास बनाती हैं। इसके अलावा उसमें बसने वाले लोग, जो उसे देश के रूप में पहचान देते हैं। हम अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा देते हैं, जिसके गौरवगान का नाम है वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गारो गान की डेढ़ सदी। ये आकाशवाणी जबलपुर है। समाचार बुलेटिन विश्व दर्पण कुछ ही पलों में हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बिहार के गया जी में कल महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले पर चिंता व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप के बीच यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। कोलंबिया में आज राष्ट्रपति पद के लिए के चुनाव के लिए मतदान। और बैडमिंटन सिंगापुर ओपन के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साई रज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया जी के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल गौसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु बिजली संयंत्र में टरबाइन बिल्डिंग पर ड्रोन हमले की खबर के बाद चिंता प्रकट की है। IAEA ने बताया कि टरबाइन बिल्डिंग पर ड्रोन हमले से उसकी दीवार में छेद हो गया। IAEA की टीम ने नुकसान का जायजा लेने के लिए उस इलाके में जाने की अनुमति मांगी है। एक रिपोर्ट।
2: महानिदेशक राफेल गौसी ने चेतावनी दी है कि परमाणु केंद्रों पर या उसके आसपास होने वाले किसी भी हमले से गंभीर खतरा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों को किसी भी हाल में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। रूस के सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने कहा कि कल यूक्रेनी ड्रोन ने यूनिट 6 के टर्बाइन आइलैंड पर हमला किया। इससे एक ढांचे को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मुख्य उपकरणों पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। ज़ापोरिज़्या संयंत्र यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। यह मार्च 2022 से रूस के नियंत्रण में है। IAEA ने इस स्थल के आसपास सैन्य गतिविधियों से होने वाले खतरों के बारे में बार बार चेतावनी दी है और परमाणु बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की मांग की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधोनाम गेब्रेसियस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधोनोम का मत है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। पूर्वी कांगो के बुनिया में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के प्रतिबंध बीमारी के नियंत्रण को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम पारदर्शिता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करते हैं। कांगो में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इबोला के 900 से अधिक संदिग्ध मामलों और 220 से अधिक

0: संदिग्ध मौतों की जानकारी दी है। दूसरी ओर पड़ोसी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में नए संक्रमण सहित कुल 900 मामलों की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के अनुसार ये प्रकोप इबोला के बुंडी बुगियो स्ट्रेन से संबंधित है। इसके लिए फिलहाल कोई स्वीकृत टीका और विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान निर्धारित है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि कोलंबिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल एक बार और 4 साल के लिए होता है। पेट्रो देश के आधुनिक इतिहास के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं। सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन की ओर से सीनेटर इवान सेपेडा मुख्य उम्मीदवार हैं। वे पेट्रो की सामाजिक और आर्थिक नीतियों तथा देश में शांति स्थापित करने की उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। वहीं दक्षिणपंथी उम्मीदवार एबलार्डो डेला एस्प्रियला कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर सीनेटर पालोमा वालेंसिया सुरक्षा और आर्थिक विकास पर आधारित रूढ़िवादी नीतियों के साथ मतदाताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया है। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला संवाद में भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन का महत्वपूर्ण आधार बताया। श्री हेक्सेथ ने भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा औद्योगिक क्षमताओं की भी खुलकर प्रशंसा की। श्री हेक्सेथ ने कहा कि भारत और अमरीका सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के लिए संयुक्त उत्पादन पहलों पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने संबंधी प्रस्तावित समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.73% गिरकर $87.36 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि ब्रेंट 1.77% गिरकर $92.05 प्रति बैरल पर स्थिर रहा। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने AUKUS सुरक्षा समझौते के तहत सैन्य क्षमता बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और समुद्र के भीतर केबल की सुरक्षा के लिए पानी के नीचे ड्रोन तकनीक विकसित और तैनात करने की संयुक्त भागीदारी की घोषणा की। इन नेताओं ने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला संवाद सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अंडरसी व्हीकल UUV तकनीक के अगले वर्ष तक तैयार होने की संभावना है। ये सेंसर शस्त्र प्रणाली और अन्य क्षमताओं से युक्त होगी और समुद्र की तलहटी में बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करेगी, निगरानी रखेगी तथा सैन्य अभियानों में मदद करेगी। रूस ने आर्मेनिया में अपने राजदूत सर्गेई कोपेरिकिन को परामर्श के लिए मॉस्को वापस बुला लिया है। 7 जून को होने वाले चुनाव से पहले यूरोपीय संघ के साथ संबंध मजबूत करने के आर्मेनिया के प्रयासों को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर ऐसा किया गया है। और अब खबरें खेल जगत से।
3: सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजल अल्फियान से होगा। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराया था। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मन PSG ने लगातार दूसरी बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। बुडापेस्ट में फाइनल में PSG ने आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। और अब बात करें महिला क्रिकेट की, तो ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। इसके अलावा IPL क्रिकेट के फाइनल में आज गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। बिहार के गया जी में कल महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले पर चिंता व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप के बीच यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देश से अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। कोलंबिया में आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है। 10:20 हुए हैं। अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

दोस्तों नमस्कार। आज का ये सफर आप तय करेंगे अपने दोस्त चमन सालवार के साथ। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दोस्तों सिर्फ चेहरे ही स्मृतियों में नहीं सहेजे जाते बल्कि चिट्ठियां भी सहेजी जाती हैं, क्योंकि हम जब भी आपकी चिट्ठियां छाटने बैठते हैं तो अगर कोई श्रोता लंबे अरसे से चिट्ठियां नहीं लिख रहा तो तुरंत दिमाग में कौन हो जाता है कि फला श्रोता की चिट्ठी नहीं आई है, या किसी चिट्ठी में जितने नाम आमतौर पर हुआ करते हैं उससे कम रहते हैं, तब भी दिमाग में सवाल आते हैं कि इनके आपसी रिश्ते तो ठीक ठाक हैं। तो ये मान के चलें कि आपका और हमारा जो नाता है उसे मजबूत करने में चिट्ठियाँ बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, और चिट्ठियों पर ही आधारित ये कार्यक्रम है सारंगा। और अब वो चिट्ठियाँ जिन्होंने पहले गाने को पसंद किया है और जो श्रोता हैं आप सब हैं, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से ये खत है, कमरुल्ला नसीम बेगम, आयसा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्तबा खान, अफिया खान, राउफ और शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, बंडा बेलई सागर से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली वैष्णवी, दीपेश लल्लू हल्ले और ऋषि रैकवार, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरसू जाजोरिया। ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में है, गीत साहिर का, संगीत खयाम का, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

त्रिशूल के इस गाने में लता मंगेशकर और किशोर कुमार के साथ थे येसुदास। अगला गाना जानिसार अख्तर ने लिखा है, खयाम ने संगीतबद्ध किया और आवाज़ है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। फिल्म का नाम है नूरी। पसंद करने वाले श्रोता आप सब हैं। जामरून ता अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी, परभणी हुन, गणेश हरगांवकर और उनके बहुत सारे दोस्त। गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। पिंडरे जिला मंडला से कमला प्रसाद शर्मा, कृपाल पटेल, कबीर जैन, संजय जैन, सुमत कुमार जैन, राधेश्याम केवट और मोहम्मद मोहराली। गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी, राधेश्याम चावला, कुछ नाम इसमें और हुआ करते थे। बहरहाल सुनते हैं नूरी फिल्म का ये नगमा।

दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलबीर सिंह, जरुण वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीर, चंद्र प्रभा वाडोदे और उनके बहुत सारे दोस्त हैं। ये चिट्ठी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार की है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां की। विद्यानगर तेंदुखेड़ा दमोह से ओम प्रकाश नेमा, किरण नेमा, आकाश विकास, नंदिनी, शिवांश और उनके साथी। ये चिट्ठी बन्य बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ की है, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष और परिवारजन। मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन गवाणकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी धोनी गवाणकर। शिवाजीनगर बड़ाली देशमुख से राजेश खुबरखेड़े, शिवसागर खुबरखेड़े, इंदिरा पाई, खांडवी बुढ़ाना से दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े, थिलोरी अमरावती से सुनेना पवन भोंडे। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा, जिसे संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है तेरी कसम।

आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव सपना, ये साइना है, और निवान शर्मा। मोटा का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरसान और अबान अब्बासी। बाजारपारा बेमेतरा से भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा। अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव किशोरी, एलपी रोहित, लल्लूराम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवारजन। ये गाना सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में है, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत, फिल्म का नाम है वास्तव।

सारनाथ बनारस से बाबू यादव, मंशा यादव और परिवारजन, सतना से चांद मोहम्मद, लाल मोहम्मद, सितारा खान और परिवारजन, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर और अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म खूबसूरत से।

कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज। संजय छेल के बोल, जतिन ललित का संगीत।

दोस्तों, आज का ये सफ़र बस यहीं तक, क्योंकि हम सबको चलना है दिल्ली, जहां से 11 बजे हम सब मिलकर सुनेंगे प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात।

0: उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
2: कोई बोले राम राम।
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया फीडबैक चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया फीडबैक।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं

0: एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदरवीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदरवीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदरवीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भाग

0: थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज़ किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा, देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीरभिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूँ कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश

0: अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रियमानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर्वीरसिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन् शङ्करः, देवमीणा, कुलदीपकुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शतमीटरमितधावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शतमीटरमितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शतमीटरमिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दर्वीरसिंहः, अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः, गुरिन्दर्वीरः भवतेऽपि नमस्कारः, सत् श्री अकाल च, अनिमेष गुरिन्दर्वीरौ नमस्कारः श्रीमन्, नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत्समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः, नमस्ते महोदय, मम नाम अनिमेषकुजूरः। अहं 200 मीटर, 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि, अधुना च अहं ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगत वर्षे अहं एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि

इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। नेपाल बैले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इसी गीत को सुनना चाहा था। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सिलसिला से। स्वर हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है शिवहरी ने।

इस गीत को सुनना चाहा था कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहा था शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुर्बानी से। आवाज़ें कंचन मनहर उदास और आनंद की। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर मीका, जयतेक बिरक और मीका बिरक ने

0: कुर्बानी फिल्म के इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की पांचवी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना मुश्ताक सायरा को लिए बिना वापस लौट जाता है। फजी मुश्ताक से सायरा को ना लाने की वजह पूछती है। कुछ दिनों बाद लोगों की कानाफूसी सुनकर वो मुश्ताक को दोबारा भेजती है। और अब आगे।

0: अरे फाता, करीम ने खबर भेजी है कि सारे को भेज दूं।
1: सारे को भेज दूं? वो क्या बोझ है हम पर? भेज दूं? अरे सारे को बुलाना ही है तो खुद आते या मुश्ताक को ही भेजते?
0: फाता, तुम हर बात उल्टी ही क्यों लेती हो? सारे उनकी बहू है और उन्होंने मुश्ताक को भी भेजने की बात कही है। मुश्ताक आए तो सारे को भेज देना।
2: सलाम अब्बू।
0: अरे अरे आओ बेटा, आओ, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी।
2: सलाम अब्बी।
0: सलाम, खुदा सलामत रखे। फाता, सारे को बोल चाय बना लाए।
1: बोलती हूँ।
2: आपको अब्बू का पैगाम तो मिल गया होगा?
0: हाँ बेटा, हाँ, मिल गया, और अभी उसी पर बात हो रही थी।
2: अच्छा,
0: इशारे को कैसे भेजा जाए। अब तुम आ ही गए हो तो साथ ही लेते जाना।
1: कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अभी ऐसी भी क्या जल्दी है कि सारे को ले जाओगे? कुछ दिन मायके में रहती तो उसे भी थोड़ा आराम हो जाता। वहां जाकर तो गृहस्थी की चक्की में पिसना ही है।
0: फाता, सारे को बोल तैयार हो जाए।
1: अरे मुश्ताक पहले सारे से तो मिल ले, फिर जाने की बात तो हो ही जाएगी।

0: लीजिए, चाय लीजिए।
1: सारे, तुम ठीक हो?
0: हाँ ठीक हूँ।
1: तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है।
0: मुझे मुझे आपसे बात करनी है।
1: क्या?
0: मेरी बात को जरा आराम से सुनना होगा।
1: अरे पहले बात तो कहो।
0: मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
1: क्या मेरे साथ नहीं जा सकती?

0: पर क्यों?
1: अब मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं।
0: उस घर में नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा?
1: मुश्ताक, हमारी उम्र ही कितनी है कि मैं अपने को घर गृहस्थी में झोंक दूं?
0: सारे घर गृहस्थी संभालने को तुम एक भार समझ रही हो? हमारा घर ही कितना बड़ा है, 4 लोगों का परिवार है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं?
1: मुश्ताक, मैं परिवार का विरोध नहीं कर रही, लेकिन अपना परिवार होना।
0: अपना परिवार? तो क्या वो हमारा परिवार नहीं है जिसमें हम रहते हैं?
1: परिवार तो मियां बीवी से बनता है मुश्ताक।
0: सारे, तुम्हें क्या हो गया है?
1: देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी।
0: सारे, बात मानने या ना मानने की नहीं है, तुम जो कह रही हो वो मुमकिन नहीं है।
1: इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते।
0: सारे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: तो तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? हम एक अलग घर में प्यार से रहेंगे मुश्ताक।
0: सारे, क्या हम उस घर में प्यार से नहीं रहते? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है और तुम ये कैसे सोच सकती हो?
1: मुश्ताक, मैं कुछ और नहीं जानती, तुम्हें अलग घर लेकर रहना ही होगा।
0: सारे, ये जिद गलत है। तुम शायद परिवार की अहमियत को नहीं समझती, और जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा भी होती है और परिवार उसका आधार होता है।
1: मैं अपना परिवार चाहती हूँ मुश्ताक, सिर्फ मैं और तुम, बस।
0: सारे, तुम्हें उस घर में क्या मेरे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते?
1: करते होंगे, पर मैं अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी मुश्ताक।
0: तुम समझने की कोशिश करो।
1: मैं बस इतना जानती हूँ मुश्ताक कि अगर तुम अलग घर लेकर रहने को तैयार हो तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, नहीं तो।
0: सारे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूँ? मेरे अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी मुझ पर है और ऐसा करना मुझे किसी भी सूरत में पसंद नहीं।
1: तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं?
0: सारे, क्या कि अम्मी अब्बू को संभालना अपने जीवन को नष्ट करना होता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? ये ख्याल तुम्हारे जहन में आ भी कैसे सकता है?
1: मुश्ताक, मैं तुमसे बहस नहीं करती। तुम अपने अम्मी अब्बू को कहां कैसे रखते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और एक बात और सुन लो कि जब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू उस घर में हैं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
0: सारे, ये तुम नहीं कह रही, मेरी सारे ऐसी नहीं जो परिवार को ठुकरा दे, मुझे अपनों से अलग कर दे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती कि मैं उन अम्मी अब्बू को छोड़ दूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अपने जिम्मेदारियों से मुकरने को मेरी सारा नहीं कह सकती। वो मुझसे प्यार करती थी।
1: मुश्ताक, सारे आज भी तुमसे प्यार करती है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारे, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर नहीं रुक सकते थे क्या? पर तुम नहीं रुके, और अब भी तुम मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारे, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: तुम मुझे प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर रुक सकते थे, पर तुम नहीं रुके, और तुम अब भी मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते।
0: सारे समझने की कोशिश करो।
1: तुम्हें बताना होगा मुश्ताक कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं।
0: सारे

0: अरे कुछ बताए भी, ये बोल तो सही।
1: हाय हाय, मार डाला मेरी फूल सी बच्ची को। अरे सुनो रे लोगों सुनो, मार डाला मार डाला।
2: अरे ओ फाता, क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
1: मेरी फूल सी बच्ची।
2: अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो?
1: मार डाला मार डाला।
2: किसको मार डाला, किसने मार डाला?
1: हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
2: साफ साफ बता कि हुआ क्या है।
1: सारे, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ सारे को?
1: हाय भाग फूट गए उसके, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ उसे?
1: सारे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं क्या जानती थी कि मेरे भाई का लड़का ऐसा निकलेगा, मेरे ही सारा को मारा।
2: सारे को मारा?
1: हाय या अल्लाह।
2: लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना?
1: अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों से सारे यहीं रह रही थी। मेरे बीमार होने पे आई थी, सो मुश्ताक को पसंद नहीं था।
2: अरे फाता, ऐसा भी क्या कि कोई इस बात के लिए अपनी ही बीवी को मारे?
1: अरे मर्दों का क्या है, वो तो चाहता ही है कि औरत उसकी गुलाम बन कर रहे।
2: सुना है कि मुश्ताक इससे पहले भी सारे को लेने आया था।
1: अरे इसीलिए तो नाराज हो गया और सारे को मार बैठा होगा।
2: लेकिन मुश्ताक तो सारे के अपने मामा का लड़का है, फिर भी ऐसा व्यवहार, छी छी।
1: अरे औरत मर्द का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ हर रिश्ता खत्म हो जाता है। नहीं तो कोई अपनी पत्नी को इस तरह मारे।
2: सारे कहाँ है?
1: अपने कमरे में रो रही है मेरी बच्ची, उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। हाय अब नहीं भेजूंगी उसे। हाय जो मेरी बच्ची को मेरे सामने मार सकता है, वो मेरे पीछे उसके साथ कैसा बर्ताव करता होगा। जीते जी मर गई।
2: फाता, तू अपने भाई करीम को तो समझा ही सकती है कि मुश्ताक पर लगाम रखे। अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, ये तो अच्छी बात नहीं।
1: अपने भाई से क्या बात करूं, उसे तो आराम ही है। एक नौकरानी मिल गई है जो सारा काम घर का करती है। नौकरानी की तरह हो गई है मेरी बच्ची वहां जाकर। अब मैं अपनी बच्ची को उस जालिम के साथ नहीं भेजूंगी।
2: लेकिन मुश्ताक मानेगा?
1: मानेगा नहीं तो क्या, अपनी बच्ची को मरने के लिए भेजूंगी नहीं, नहीं।
3: लेकिन औरत का असली घर तो शौहर का घर ही होता है।
2: लेकिन शौहर भी तो ऐसा नहीं होता कि हर बात पर मारे पीटे।
1: अब तुम ही लोग फैसला करो कि मैं अपनी सारे को उस जालिम मुश्ताक के साथ भेजूं या नहीं।
2: मियां बीवी के बीच झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसे में ना भेजना ठीक नहीं। पर पहले तू अपने भाई से बात तो कर ले और मुश्ताक से भी बात कर ले।
1: बात क्या करना, वो तो चाहेंगे ही कि सारे वहां आ जाए। उन्हें तो एक नौकरानी चाहिए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
2: अब चलो री, बहुत देर हो गई है।
4: हाँ,
2: चलो चलो चलो चलते हैं।

0: पता
1: आ गए।
0: पता ये औरतें क्या बातें करते हुए जा रही थीं?
1: अरे वही बातें करेंगी ना जो देखा है उन्होंने।
0: आखिर हुआ क्या है?
1: अरे मुश्ताक ने सारे को मेरे सामने जालिमों की तरह मारा।
0: फाता तू ये क्या कह रही है, मुश्ताक ने सारे को मारा? नहीं ये नहीं हो सकता, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
1: अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है मुश्ताक को सारे को मारते हुए।
0: कहीं कुछ गलती हुई है, हमें उनसे बात करनी चाहिए और इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती।
0: अरे इस बात को फैलने से हमारी बदनामी ही होगी।
1: या खुदा अब बदनामी क्या होगी, सारे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई।
0: ओफो तुमसे बात करना भी, सारे कहाँ है?
1: अरे रो रो कर बुरा हाल है बेचारी का, जिसका पति इतना निर्दयी हो उसका क्या होगा। हाय रे मेरे बच्चे।
0: अरे फाता अब तू चुप कर, तू इस बात को क्यों बढ़ा रही है, ये ठीक नहीं है, इससे उनके जीवन में दुख ही बढ़ेगा।
1: तुम चुप करो जी, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं खूब समझती हूँ। सारे मेरी बच्ची है और उसके सुख दुख को तुमसे ज्यादा मैं समझती हूँ।
0: फाता तू जो कर रही है वो सारे को कभी खुशी नहीं दे सकता, तू इस तरह से शोर मचा कर उनके जीवन में समस्या को ही बढ़ाएगी। अरे हमें दोनों से बात करनी चाहिए जिससे इस बात को यहीं खत्म किया जा सके।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती, जानबूझकर मैं अपनी बच्ची को उस मुश्ताक के साथ अब नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
0: फाता तू बात को बढ़ा रही है, ये ठीक नहीं है, हमें इस बात को सुलझाना है ना कि।
1: चुप करो चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा मैं ही करूंगी, तुम्हें बीच में बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है।
0: या अल्लाह

0: सारे मेरी बच्ची इस तरह क्यों बैठी है?
1: अम्मी अम्मी ये तूने अच्छा नहीं किया।
0: अरे सारे तू कह रही है कि मैंने अच्छा नहीं किया? अरे मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया है।
1: अम्मी ये ठीक नहीं हुआ है, ये घर की बात थी अम्मी, मेरे और मुश्ताक के बीच की बात थी और तुमने तुमने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया।
0: अरे सारे तू नहीं जानती ये मर्द ऐसे मुट्ठी में नहीं आते, अब देख मैं कैसे उसे ठीक करती हूँ।
1: अम्मी तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे।
0: तू क्या समझती है मैं तेरी दुश्मन।

0: मन हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो तेरे भले के लिए कर रही हूँ।
1: अम्मी, इससे ना तो मेरा भला हो सकता है और ना ही किसी और का। इससे सिर्फ बदनामी और बर्बादी हो सकती है अम्मी।
0: सारे सारे, तू अभी बच्ची है, दुनियादारी नहीं समझती। और सुन ले, मैं जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ बेटी।
1: आज जो हुआ है उससे किसका भला होगा अम्मी? और ये सब तुमने ही कहा था करने को।
0: अच्छा ही हुआ कि जल्द उस जालिम की असलियत का पता चल गया, जो मेरे सामने, एक माँ के सामने उसकी बच्ची को मारे, वो पीछे क्या कुछ नहीं कर सकता है।
1: अम्मी बस भी करो, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
0: ये सब क्या मुझे अच्छा लग रहा है? मुझे भी दुख है, तू मेरी बेटी है और मेरे सामने तुझे कोई मारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोल, तू ही बोल, ये अच्छा लग सकता है क्या?
1: मुश्ताक मेरा शौहर है अम्मी, और मैं उससे प्यार करती हूँ। और फिर एक परिवार में ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मुश्ताक ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
0: चुप कर तू, मैंने देख लिया अपनी आंखों से कि मुश्ताक कैसे प्रेम करता है। और अगर उसका प्रेम ऐसा ही है तो तुम्हें उसके पास दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्ताक और मुश्ताक जैसे मर्द औरत को सिर्फ घर की नौकरानी बनाकर रख सकते हैं, मार सकते हैं। और छी
1: अम्मी, तू नाहक परेशान मत हो, इस बात को यहीं खत्म कर दे, सब ठीक हो जाएगा अम्मी।
0: अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें नौकरानी सा काम करने और मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। देर से ही सही, मुश्ताक का असली चेहरा तो सामने आ ही गया, और उस करीम और फजी की नीयत का भी, जो तुझे महज एक औरत के रूप में नौकरानी समझते रहे हैं और उससे भी बदतर व्यवहार करते रहे हैं। अब देखना, मैं उन्हें बता दूंगी कि फाता की बेटी को दुख देने का मतलब क्या होता है। अगर मैंने उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम नहीं।
1: अम्मी, अब तू कुछ नहीं करेगी, जो तूने कर दिया वही बहुत है, और उससे जो कुछ भी हुआ उसे मैं कबूल कर लूंगी। अब और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी।
0: अब तू मुझे समझाएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं तेरी दुश्मन हूं बेटी? तेरी माँ हूं मैं, जो कुछ भी करूंगी तेरे भले के लिए ही करूंगी। और मैं उन्हें समझा दूंगी कि औरत पर जुल्म करना इतना आसान नहीं होता। उन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे।
1: अम्मी, तू अब कुछ भी नहीं करेगी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे तू इतना तूल दे रही है। एक परिवार में ऐसा होता ही रहता है अम्मी, हमें इसे संभालना है, ना कि बिगाड़ना। मैं बात करूंगी मुश्ताक से।
0: अब तू उस जालिम से नहीं मिलेगी
1: अम्मी।
0: और तुझे संभालना होता कब का संभाल चुकी होती, और इतने दिनों में मुश्ताक तेरी मुट्ठी में होता, जैसे खजरी अपने शौहर को अपने इशारों पर रखती है। तुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो मैं करूंगी, और इस बीच में तुम्हें बोलने या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की पांचवी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अकरम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे हरीश, लोकेश, सुप्रिया, नीलम और अंशु। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 134वें संस्करण में कहा कि नीदरलैंड में विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई हैं और यह ऐसा क्षण था जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुजालपुर में आज से कॉलेज चलो अभियान एवं महाविद्यालय में प्रवेश का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अहिल्याबाई का जीवन सुशासन, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अनुकरणीय आदर्श है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस महीने की 29 तारीख को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एप्लीकेशन के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। और आईपीएल क्रिकेट में फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की।

महिला सभा सुन रही सभी सखियों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे कुछ ठंडा ठंडा। बहनों, कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे धूम्रपान निषेध दिवस पर। आज 31 मई को पूरा विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए धूम्रपान से दूरी बनाना कितना आवश्यक है। आज आधुनिकता भरी जीवन शैली में कई लोग तनाव और दिखावे के कारण धूम्रपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शुरुआत अक्सर शौक से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत का रूप ले लेती है। यह लत केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी

प्रभावित करती है। बहनों, धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोग इस लत की वजह से असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि आज युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है। कई बार लोग इसे आधुनिकता और व्यक्तित्व का प्रतीक मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धूम्रपान व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य तीनों को कमजोर करता है। सखियों, धूम्रपान का प्रभाव केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। घर परिवार के सदस्य, छोटे बच्चे और आसपास के लोग भी इस धुएं से प्रभावित होते हैं। इसे हम निष्क्रिय धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इससे बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां और महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की भी है। यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो वह इस आदत को छोड़ सकता है। परिवार का सहयोग, सकारात्मक वातावरण, योग, व्यायाम और अच्छी दिनचर्या व्यक्ति को नशे से दूर रखने में सहायक बनते हैं। हम बहनें भी कोशिश करें कि हमारे परिवार में आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हम भी इस मुहिम में उनका साथ अवश्य निभाएं। सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। माता पिता हमारे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। वे केवल हमें जन्म ही नहीं देते बल्कि अपने अथक परिश्रम, स्नेह और मार्गदर्शन से हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं। एक बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक। वे हमें चलना, बोलना, अच्छे संस्कार अपनाना और जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। सखियों, प्रत्येक वर्ष 1 जून को पूरे विश्व में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। यह दिन उन महान आत्माओं को सम्मान देने का अवसर है जिनके प्रेम, त्याग, संघर्ष और संस्कारों से हमारा जीवन संवरता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ममता, करुणा और स्नेह का अथाह सागर होती है। वह स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को खुश रखने का प्रयास करती है। बच्चे की छोटी सी तकलीफ भी माँ को बेचैन कर देती है। उसकी दुआओं में हमेशा अपने बच्चों का सुख और सफलता ही शामिल होता है। वही पिता परिवार की वह मजबूत नींव होते हैं जो अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे रहते हैं। पिता का प्रेम अक्सर कठोर अनुशासन और जिम्मेदारियों के पीछे छिपा होता है, लेकिन उनका हर संघर्ष अपने परिवार की खुशियों के लिए ही होता है। माता पिता का जीवन त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। सखियों, आज के समय में व्यस्त दिनचर्या, मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवारों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार बच्चे अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। वृद्धावस्था में माता पिता को सबसे अधिक आवश्यकता अपने बच्चों के साथ सम्मान और अपनत्व की होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही माता पिता जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। बहनों, भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन लोगों ने हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमें हमेशा संकल्पित होना चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि जीवन में सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माता पिता का आशीर्वाद उससे कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

बहनों, अब बात करते हैं 1 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस की। इस दिवस का उद्देश्य दूध के पोषण महत्व, स्वास्थ्य लाभ और मानव जीवन में उसके योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास से लेकर बुजुर्गों की हड्डियों की मजबूती तक दूध हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में दूध का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही दूध और दुग्ध उत्पाद हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हमारे पर्व त्योहारों, पूजा पाठ और पारंपरिक व्यंजनों में भी दूध का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। बहनों, दूध केवल पोषण का स्रोत ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल है। लाखों किसान और पशुपालक दुग्ध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं। दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के समय में बच्चों में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। ऐसे में दूध और उससे बने पौष्टिक पदार्थों को दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक हो गया है। दूध शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन उचित मात्रा में दूध का सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं तथा शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। दूध से बने दही, पनीर, छाछ और घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सखियों, दूध स्वास्थ्य का आधार है। यदि प्रतिदिन संतुलित मात्रा में दूध का सेवन किया जाए तो शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बना रहता है। इसलिए हमें अपने दैनिक भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थों को अवश्य शामिल करना चाहिए। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बढ़ते तापमान की। ग्रीष्म ऋतु अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लेकर आती है और इस समय तो सबसे ज्यादा गर्म दिन 9 तपा चल रहे हैं। इस मौसम में यदि सावधानी न रखी जाए तो शरीर में पानी की कमी, थकान, लू लगना और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का रस शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। अधिक देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए और हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम जैसे मौसमी फल शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो इनका सेवन भी हमको करते रहना चाहिए। गर्मी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बासी भोजन और खुले में रखी खाद्य सामग्री से दूरी बनानी चाहिए क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने से बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी में

अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। उन्हें समय समय पर पानी पिलाना चाहिए और अत्यधिक गर्म वातावरण से बचाना चाहिए। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। यदि हम थोड़ी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाएं तो ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते हुए स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। सखियों, ये बात तो हुई गर्मी के मौसम में हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, और अब चलते हैं उन 7 बातों की तरफ, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातें यानी 7 वचन की तरफ। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से राष्ट्रहित में 7 महत्वपूर्ण बातें कही। यह बातें उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते तेल दाम, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के संदर्भ में की थी। सर्वप्रथम, 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक सोना आयात करने वाले देशों में है। सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदा जाता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है, इसलिए हम लोगों को 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना। दूसरी बात, विदेश यात्रा ना करें। विदेश यात्रा में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अभी आपको पर्यटन पर जाना है तो भारत में कई ऐसी सुंदर सुंदर जगह हैं, आप वहाँ जा सकती हैं। पेट्रोल डीजल की बचत करें। भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। कहीं जाना है तो एक दूसरे के साथ एक गाड़ी पर जाएं। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं। विदेशी वस्तुओं की जगह भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। स्वास्थ्य और आयात दोनों कारणों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्राकृतिक खेती और ईवी को बढ़ावा दें। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही गई। कोविड काल की तरह जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स अपनाने की बात कही गई, ताकि ईंधन की बचत हो सके। देशवासी इन 7 बातों यानी इन 7 वचनों का पालन करें तो भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रह सकते हैं। तो हम सबको भी कोशिश करनी है कि हम इन 7 वचनों का पालन करें।

सखियों, गर्मी की तपती दोपहर में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए तो कितनी राहत महसूस होती है। आज खाना खजाना में हम लाए हैं आपके लिए गोंद कतीरे का शरबत बनाने की विधि। वैसे तो यह हमारे दादी नानी के समय से बनता चला आ रहा है, पर इस समय यह काफी ट्रेंड में है। तो चलिए नोट कीजिए गोंद कतीरा शरबत में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए गोंद कतीरा 2 छोटे चम्मच, ठंडा दूध 1 गिलास, चीनी या मिश्री स्वादानुसार, गुलाब का शरबत 1 बड़ा चम्मच, बर्फ के टुकड़े, इलायची पाउडर थोड़ा सा। शरबत बनाने के लिए रात भर गोंद कतीरा को पानी में भिगो दें, सुबह तक यह फूलकर जेली जैसा हो जाएगा। अब 1 गिलास ठंडा दूध लें, उसमें चीनी या मिश्री मिला लें, भीगा हुआ गोंद कतीरा डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें गुलाब शरबत, इलायची पाउडर और साथ ही बर्फ के टुकड़े डाल दें। लीजिए, ठंडा ठंडा गोंद कतीरा शरबत बनकर तैयार है। बहनों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू और गर्मी से बचाता है, पेट की जलन कम करता है। सखियों, गर्मी की दोपहर ज्यादा बड़ी होती है। इस समय दोपहर का भोजन करने के बाद 3 से 4 बजे तक हल्की भूख लगने लगती है, तो उसके लिए कुछ ठंडा चटपटा खाने का मन करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं चटपटे मूंग दाल के पानी बड़े। इनको बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल धुली वाली 1 कप, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, हींग चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और साथ ही चाहिए थोड़ा तेल पकौड़े तलने के लिए। और चटपटे पानी के लिए हमें चाहिए पानी 1 लीटर ठंडा, पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, हरा धनिया थोड़ा सा, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर और साथ ही चाहिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और सादा नमक। सबसे पहले मूंग दाल बड़ों को बनाने के लिए जो दाल हमने ली है, आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अब उसको धो लें अच्छे से, उसका पानी निकाल दें और मिक्सर में इसको पीस लें। इसका हमें बारीक पेस्ट तैयार नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। अब इसमें आप हींग, हरी मिर्च और नमक मिला लें और अब इस घोल को 2 मिनट अच्छे से फेंट लें ताकि यह हल्का और फूला हुआ हो जाए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और छोटे छोटे पकौड़े सुनहरे होने तक सेक लें। अब इसका पानी तैयार कर लें। एक बर्तन में ठंडा पानी लें, इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और बाकी सब

0: मसाले मिला लें। अब इस पानी में जो हमने बड़े सेके थे उनको डाल दें। इनको 15 से 20 मिनट आप इस पानी में भिगो कर रखें। अब यह सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो इस गर्मी आप भी यह ठंडे चटपटे मूंग दाल के बड़े बनाइए और खाइए। सखियों, गर्मी में अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोता बहनें अभी सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु गीत से।

मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार है संगीता राय।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने संगीता राय के गाए गीत और भजन सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: na Sansani, na Sansani, na Sansani, na Ottecna, na Ottecna, na Shor Din Ra, na Shor Din Ra, na Shor Din Ra, na hi ahankar, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सलिल चौधरी के संगीत से सजे गीत से। आवाज तलत महमूद की है और फिल्म है छाया।

0: फिल्म गंगा जमुना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणकों द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी

जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निरवा और उसके 3 शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के

0: बिहार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है।

0: उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली

0: सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। नन्हे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की।

नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मुस्कान में। मैं हूं आपकी दोस्त विभूति। आज के हमारे कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी, एक मजेदार पहेली, देंगे आपको एक छोटा सा मैसेज और मिलेंगे अपने दो खास मेहमान बच्चों से भी। अंत में सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। तो चलिए शुरू करते हैं मुस्कान, प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ। बच्चों अब सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। बच्चों आज हम सुनाएंगे कहानी आलस बुरी बला है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आलसी बनने से रोकेगी। एक गांव में रहता था किशोर, एक बहुत आलसी लड़का। वो भैंसे चराने जाता लेकिन सो जाता, जब दूध बेचने जाता तो खूब बहाने बनाता और सबसे कहता भाग्य में जो होगा सो होगा, यही उसका मंत्र था। एक दिन उसके द्वार पर आए एक साधु और साधु उससे बोले, बेटा मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ, ये पत्थर लोहे को सोना बना देगा, मैं 8 दिन बाद वापस आऊँगा। किशोर खुशी से बोला, महाराज बहुत धन्यवाद। अगले दिन किशोर ने सोचा, मैं कल लोहा खरीद लूँगा और सो गया। दूसरे दिन पत्नी ने उसे उठाया तो वो थोड़ा सा लोहा लेकर आया।

0: जो सोना बन गया। वो उस सोने को बाजार में बेच आया, लेकिन बोला, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, और फिर से सो गया। ऐसे करते करते तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां, छठवां, सातवां दिन भी बीत गया। किशोर सोते रहा। आखिरी दिन साधु आए और क्रोधित होकर बोले, पारस वापस करो। किशोर घबराते हुए बोला, महाराज अभी तो कुछ बनाया ही नहीं है, थोड़ा सा समय और। साधु ने गुस्से में कहा, तू आलस का गुलाम है, तेरे जैसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। किशोर पछता कर रह गया। साधु पारस लेकर वापस चले गए। अब देर हो चुकी थी, आलस ने किशोर के सारे सपने चुरा लिए थे। तो बच्चों, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए।
1: बच्चों, इस कहानी में कितनी प्यारी सी सीख है कि छोटे काम भी बहुत बड़ा असर करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे मजेदार पहेली कोने की तरफ, जहां पर आज हम आपको सुनाएंगे एक पहेली जिसका आंसर देना होगा आपको। पहेली ये है कि मैं बिना पांव के चल सकता हूँ, बिना मुंह के बोल सकता हूँ और बिना हाथ के चीजें हिला सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। बताओ मैं क्या हूँ? आंसर समझ में आया? कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर सोचिए और मैं देती हूँ एक छोटी सी हिंट। हिंट ये है कि जब मैं तेज होता हूँ तो पेड़ हिलते हैं, और जब मैं धीमा होता हूँ तो पत्तियां शांत रहती हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जवाब है हवा, या हवा का झोंका। हवा बिना पाँव के चलती है, बिना मुंह के लगता है कि बोल रही है, और पेड़ों को हिला देती है। अब सच बताइए, आपको उत्तर समझ में आया था या आपने सोचा था कुछ और? अब हम पढ़ते हैं हमारे संदेश की ओर। एक छोटी सी काइंडनेस। आप हर रोज कोशिश कीजिए कि किसी का काम थोड़ा सा आसान कर दें, किसी छोटे को अपने खेल में शामिल कर लें, या घर में किसी बड़े की मदद कर दें। रास्ते में गिरे हुए केले के छिलके को उठा दें, जिससे सफाई भी होगी और वो किसी को फिसलने से, गिरने से भी बचाएगा। ऐसी दया या काइंडनेस से आपका दिल बड़ा होता है और आपके होठों पर खिलती है मुस्कान। अब वक्त है हमारे मेहमानों से मिलने का। आज हम जहाँ हैं वहाँ हमारे आसपास नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलो इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या कर रहे हैं। हेलो बेटा।
2: हेलो।
1: आपका नाम क्या है?
2: स्वरा।
1: स्वरा कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: फोर्थ।
1: तो अभी आपके समर वैकेशंस चल रहे होंगे?
2: यस।
1: छुट्टियों में के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको?
2: मुझे छुट्टियों के बारे में, एक मैं डांस क्लास जाती हूँ, वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं और मैं उनके साथ खेल भी पाती हूँ। उस गली में कोई रहता ही नहीं है।
1: अच्छा, जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई नहीं रहता है ना, और जो फ्रेंड्स मिलते हैं डांस क्लासेस में वो बहुत अच्छा लगता। तो सिर्फ डांस सीखते हो कि और भी मस्ती करते हो?
2: हम डांस भी सीखती हूँ मैं। मम्मा ने कुछ क्लासेस की बात करी है, पर वो इतने सारे चार्जेस ले लें अवेकस के लिए, ड्राइंग के लिए, तो मम्मा ना अब हमें
1: एक क्लास ज्वाइन कराई है।
2: हाँ,
1: क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। थोड़े कम चार्ज लेना चाहिए ना उनको, जिससे बच्चे ढेर सारा सीख सकें।
2: हाँ।
1: तो अभी कितने गानों पर डांस सीखा है आपने?
2: अभी तो मैंने टोटल 5 सॉन्ग्स पर डांस सीखा है।
1: हमें करके दिखाना, आप जब हम बात कर ले उसके बाद मैं डांस दिखाओगे?
2: हाँ।
1: सिर्फ डांस पसंद है, गाना गाना भी पसंद है आपको?
2: थोड़ा थोड़ा पसंद है गाना गाना, वैसे तो डांस करना ही पसंद है।
1: ज़्यादा डांस करना पसंद है। और सबसे अच्छा कौन डांस करता है आपकी क्लास में?
2: सबसे अच्छा दीदी करती हैं।
1: सिखाने वाली?
2: वो वाली जो आती है क्लास में
1: आपके साथ सीखती हैं वो। तो क्या नाम है उन दीदी का?
2: उन दीदी का नाम है आराध्या।
1: आराध्या। और सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है आपकी इस डांस क्लास में?
2: सबसे अच्छी फ्रेंड अद्विका है।
1: वो भी डांस सीखती है कि वो कुछ और भी सीखती है?
2: वो डांस भी करती है और आर्ट क्लास भी जाती है।
1: अच्छा, छुट्टियों में सिर्फ ये हॉबी क्लासेस कर रहे हो, कुछ पढ़ाई हो रही है घर पे?
2: थोड़ी थोड़ी।
1: कितनी?
2: थोड़ी सी। इसको पढ़ा देती हूँ मैं अपने भाई को।
1: अच्छा, तो बस उसी में आपकी पढ़ाई हो जाती है?
2: हाँ।
1: वेरी स्मार्ट। अच्छा, और भी कुछ घर पे कर रहे हो?
2: मैं घर पे स्केचिंग करती हूँ और ड्राइंग करती हूँ खुद से।
1: क्या बनाया आपने कल स्केच?
2: कल मैंने स्ट्रॉबेरी का स्केच बनाया।
1: स्ट्रॉबेरी का? स्ट्रॉबेरी बहुत तो फायदेमंद है। आपको पसंद है खाने में स्ट्रॉबेरी?
2: थोड़ी थोड़ी।
1: कौन सा फ्रूट पसंद है खाने में?
2: मुझे बनाना।
1: बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो बनाना शेक भी पीते हो या कैसे खाते हो?
2: सिंपल जैसे सब लोग खाते हैं,
1: उसको छिलका उतार के।
2: हाँ।
1: और केले का छिलका कहीं यहाँ वहाँ गिरा दिया है तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ये पता है आपको?
2: हाँ पता है।
1: किसी को गिराने की कोशिश तो नहीं करी?
2: नहीं।
1: तो छिलका कहाँ डालते हैं?
2: छिलका डस्टबिन में डालते हैं।
1: वेरी गुड। अच्छा, डांस क्लास का टाइम क्या? आज तो इतनी गर्मी भी हो रही है, तो कितने बजे जाते हो?
2: मेरा 8 बजे का बैच है।
1: मॉर्निंग?
2: मॉर्निंग।
1: और कितनी देर तक सीखते हैं?
2: मैं 10 बजे तक।
1: 10 बजे तक सीखते हो। तो कौन से गाने पे डांस करना सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, ज़रा गा के बताओ। मैं
2: घर मोरे परदेसिया।
1: थोड़ा गाना आता है? थोड़ा सा
2: नहीं।
1: कोई पोयम आती है? मेरी फेवरेट पोयम हमें सुना दो जो बच्चे सुन रहे हैं।
2: कौन सी?
1: जो भी आपको पसंद हो। हिंदी की कोई कविता सुना दो।
2: हिंदी की क्या सुनाऊँ?
1: हिंदी की कविता याद नहीं है?
2: नहीं है।
1: इंग्लिश की याद है?
2: इंग्लिश की मुझे मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही।
1: तो कोई गाना ही सुना दो फिर।
2: गाना सायवा सायवा नींदे मींदे आए ना राती काटी जाए वह तेरे ही ख्याल।
1: अच्छा, तो आप नहीं गाना नहीं गा पा रहे हो। कोई जोक, कोई कहानी, कोई शायरी कुछ याद आ रही है तो सुना दो
2: मुझे ना। रातों रात मिटा दूंगी बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान।
1: ये आपने फिल्म में सुना है?
2: नहीं, यूट्यूब पे।
1: कोई बच्ची बोल रही थी आपके जैसी?
2: नहीं, बड़े लोग।
1: अच्छा, तो आपको ये अच्छा लगा?
2: ठीक ठीक लगा, ज्यादा अच्छा नहीं।
1: ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो कुछ ऐसा सुनाओ जो अच्छा लगा।
2: यही अच्छा लगा।
1: अच्छा अच्छा, अब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको?
2: स्कूल में फ्रेंड्स मिलते हैं और जब मैं स्कूल जाऊंगी उस दिन गेम्स का पीरियड है तो मज़ा भी आएगा।
1: कौन सा गेम खेलती हो?
2: हम अभी के लिए तो बैडमिंटन और यही गेम्स खेलते हैं, डोज बॉल।
1: अच्छा, घर में आप थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हो, जैसे मम्मा हैं या पेरेंट्स हैं आपके?
2: हाँ।
1: क्या काम करते हो?
2: मैं बोटल्स में पानी भर के रखती हूँ ठंडा होने के लिए, उनके कपड़े को घड़ी करके रखती हूँ और कभी कभी सफाई कर देती हूँ थोड़ी बहुत।
1: सफाई तो बिल्कुल करनी चाहिए, सफाई बहुत अच्छी चीज़ है ना। और ये जो भैया है आपका, ये गंदी करता है या सफाई करता है?
2: मेरे साथ कभी थोड़ी थोड़ी सफाई भी कर लेता है और कभी गंदी की भी करता है।
1: फिर आप कान खींचते हो इसके?
2: कान कभी कभी
1: इससे ही बातें करते हैं ना।
2: चलो,
1: क्या नाम है आपका?
3: अयांश।
1: और अभी सब फ्रेंड्स को हेलो बोलिए जो आपको सुन रहे हैं। बोलिए
3: हेलो फ्रेंड्स।
1: थोड़ा जोर से बोलिए
3: हेलो फ्रेंड्स।
1: अयांश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
3: एलकेजी।
1: एलकेजी में पढ़ते हो। केजी में आपने कुछ सीखा है? पोयम सीखी है कोई?
3: हाँ।
1: सीखी है?
3: हाँ।
1: सुनाइए।
3: 1 2 3।
1: 1 2 3 सीखा है?
3: हाँ।
1: सुनाओ।
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 10।
1: थोड़ा जोर से बोले।
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 10।
1: 8 भी आता है बीच में। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल वाली पोयम आती है?
3: नहीं।
1: जॉनी जॉनी वाली
3: आती है।
1: सुनाइए अपने फ्रेंड्स को। अभी आपने हेलो बोला ना, अब वो सोच रहे होंगे आयांश कुछ सुनाएगा हमें।
3: जॉनी जॉनी, यस पापा, शुक्र नए नए पापा।
1: जॉनी जॉनी यस पापा आता है बस?
3: हाँ।
1: चलो ठीक है, काफ़ी है इतना। और आपको काउंटिंग भी आती है ना, 1 2 10?
3: हाँ।
1: 10 के आगे नहीं आती। तो आयांश, आपको छुट्टियों के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है?
3: आती है काउंटिंग।
1: आती है?
3: हाँ।
1: 10 के आगे आती है?
3: हाँ।
1: सुनाओ।
3: 11,
1: वेरी गुड।
3: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
1: यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा, आप पोयम भी याद आई क्या कोई सी? जॉनी जॉनी पूरी याद आई?
3: हाँ।
1: सुनाओ।
3: अभी तो सुनाई,
1: अभी एक ही लाइन सुनाई थी। पूरी पूरी मैं बोल रही हूँ, पूरी याद आई?
3: हाँ।
1: सुनाओ सुनाओ।
3: जॉनी जॉनी यस पापा, शोल्डर रहे थे नहीं बाप।
1: अच्छा, और अपने हाथों से ये आप हार्ट का शेप बना रहे हो?
3: नहीं।
1: अच्छा, आप जो आपके फ्रेंड्स सुन रहे हैं उनसे कुछ और भी बात बोलनी है आपको?
3: नहीं,
1: कुछ नहीं बोलना।
3: नहीं।
1: अच्छा, छुट्टियों में क्या करते हो ये तो बताओ हमें।
3: छुट्टियों में रुक जाता हूँ घर पे।
1: और घर पे रुक के क्या होता है?
3: नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ। हाँ।
1: और आप स्पेशल कपड़े कब पहनते हो?
3: फैशन कपड़े बाजार के लिए होता है।
1: बाजार के लिए स्पेशल कपड़े पहनते हो, तो वो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं?
3: ड्रेसिंग रूम में।
1: ड्रेसिंग रूम में। और जो नॉर्मल कपड़े हैं वो कहाँ होते हैं?
3: वो भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं।
1: अच्छा, लेकिन आपने जो पहना है हमें तो ये काफी स्पेशल लग रहा है। ये भी, ये किसने बनाया आपको?
3: ए, मामा ने। आपके पास में टिश्यू पेपर है ना?
1: टिश्यू पेपर है। हाँ, टिश्यू पेपर किस लिए काम आता है?
3: पोंछने के लिए।
1: क्या पोंछने के लिए?
3: खाना।
1: खाना पोंछने के लिए, वेरी गुड। और भी पसीना भी पोंछ सकते हैं?
3: पसीना नहीं मार सकते हैं, पसीना तो पाउडर नहीं तो ऑयल से।
1: ऑयल से पोंछते हैं पसीना?
3: नहीं तो पाउडर से।
1: और पाउडर से पोंछते हैं? ये तो यार आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, मुझे पता नहीं था। ऑयल से कैसे पोंछते हैं पसीना?
3: और बस बस
1: बस।
3: हाँ
1: बस।
3: हाँ
1: बस की ट्रेन?
3: बस
1: बस। हाँ, अपनी भी बस। चलो
3: क्या बोलूँ?
1: कोई गाना सुनाओगे?
3: नहीं।
1: कोई बात करनी है फ्रेंड से?
3: हेलो।
1: अच्छा बाय बोलो, बाय बोलने का टाइम आ गया।
3: बाय, सी यू।
2: बाय फ्रेंड।
3: बाय फ्रेंड।
1: तो बच्चों, ये थे ये बहुत प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे। बच्चों, इन प्यारे दोस्तों से मिलने के बाद अब समय है हमारे गीत का। चलिए तो सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। आप भी कोशिश कीजिएगा संग संग गा

और इसी गीत के साथ अब वक्त है आपसे बाय बोलने का। जी हाँ, अब हमें ये प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। आपका बहुत सारा धन्यवाद ये प्रोग्राम सुनने के लिए, और ये था आज का मुस्कान। मिलेंगे आपसे ऐसी ही प्यारी प्यारी बातों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, और आपके चेहरे पर हमेशा हमेशा खिली रहे मुस्कान। नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे तमिल समुदाय विशेष उत्साहित है। ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में किसानों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने यहां शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और रोड शो में सहभागिता भी की। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। श्री स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण, मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरीय निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। और राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युववाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6 बजे से। 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें गीत संगीत और चर्चा के साथ ही सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:30 से। विषय रहेगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन और समसामयिक कार्य। इस विषय पर आप सीधे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर रहेगा 2660902 और 2660903। विशेषज्ञ होंगे प्रवीण कुमार जगा। रात 8 बजे का समय सुर्खियों में कार्यक्रम के लिए होगा। डकर विकास के कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री ई विद्या योजना पर केंद्रित कार्यक्रम, जो आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रहेगी। रात 10 बजे से सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।
1: आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये,

0: और ये खत आया है कृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ,

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशिला देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा रहा
2: नहीं,
1: है।
2: बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत शांत बना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डिजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया था।
1: ओह नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। हा?
2: प्यारा प्यारा सा दुलारा सना।

0: देसी
1: छोड़ दीजिए ना।
0: अरे अरे सुनो तो।
1: नहीं सुनती।
0: ओफो, अरे बात तो सुनो
1: बेनी। देखो देखो तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
0: ओ डेजी डेजी माय लव। डेजी हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
0: सुनो मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
0: अच्छा बाबा हम दोनों जैसा।

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस? क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की हुई साड़ी।
0: ओ डेजी, माय गॉड।

0: सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई, उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं। जोर से मत बोलिए। 2 दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूं मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा। इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्योंड़े जी?
0: जी हाँ
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों

0: तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
1: एक साथ घूमने लगेंगे?
0: हाँ?
1: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
0: अरे हंडे जी, बच्चा कहाँ है?
2: वो
0: सो रहा है?
1: वो तो बहुत बीमार है, दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
0: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
2: बट दैट डजंट मैटर डॉक्टर, स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
0: अच्छा, मैं चलता हूं। भाई कुछ जरूरी काम है, चलो डेजी।
2: ओके,
1: अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय बाय।
1: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
3: जब तक जरूरी होगा।
1: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
3: अपने लिए।
1: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
3: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
1: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
3: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
1: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
3: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
1: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
3: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
1: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
3: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
1: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
3: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
1: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
3: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
3: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
3: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
3: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
1: मिल गया संतोष। मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
0: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
0: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
0: डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
0: नहीं।
1: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
0: लॉरेंस को? नो नो, नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
0: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
0: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो।

0: बेजी बोलो क्या हुआ?
1: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
0: क्या?
1: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
0: क्या?
1: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
0: बोलो।
1: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
0: मैं?
1: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
0: नहीं नहीं डेजी नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। I'm sorry,
1: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
0: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
1: प्लीज डॉक्टर।
0: अच्छा चलो मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
1: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आधम की और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
1: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
0: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ डॉक्टर रामदास,
0: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
0: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
0: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
0: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
0: कोई कुछ समझ न सके इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
0: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
0: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं
0: डॉक्टर लॉरेंस। काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट इट ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? 2 घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी।

0: ब्यूटीनर्स दौड़कर बुलाने के लिए गए, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर, नो डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो नो, क्यों डॉक्टर,
0: सच है ना, सच है ना। तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया, क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हांफ क्यों रहे हो, क्यों डॉक्टर लॉरेंस? ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना, ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी।
1: हाँ,
2: हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: हाँ, वो डेजी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
1: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
2: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
1: डेजी,
2: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को

0: मार डाला ना?
1: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
0: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
1: डेजी,
0: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
1: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
0: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह सकेंगे।
1: नहीं नहीं, डेजी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
0: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
1: ओह माय गॉड,
0: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
1: ओह नो,
0: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
1: विदा?
0: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
1: था। डेजी, डेजी,
0: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे, ये आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
1: डेजी, ये मेरी नजर टूट रही है। डेजी, डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
0: नहीं लॉरेंस, नहीं, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी के प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो, करो डॉक्टर को बुला के। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की ये कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
2: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
2: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिक

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया,
0: जी
1: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं,
0: जी
1: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं
0: नहीं
1: सुना
0: सुना
1: हो,
0: होगा
1: तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है।
0: जी
1: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका।
0: जी बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में।
1: जी
0: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं
1: मैं तो अच्छी हूँ।
0: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया
0: जी
1: अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी, और वो कवि थे,
0: जी
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी
1: और ज़्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
0: रखते ही
1: हैं।
0: हैं
1: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी,
0: जी बिल्कुल
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था,
0: जी
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे,
0: अच्छा जी
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे। उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूँगा, तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहाँ पर थे,
0: जी
1: रावल जी,
0: अच्छा
1: और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में।
0: जी
1: वहाँ पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहाँ पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
0: अच्छा
1: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म

0: करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थे। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना? और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में, उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी एक्टर।
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और प्रदीप
0: प्रदीप कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ
1: एक
0: में।
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: तो आइए सुनते हैं ये प्यारा
0: हाँ
1: सा गीत।

मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन-कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या

0: सीखा पिता के साथ रहकर घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया। हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे। लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी
1: फ्रीडम। हाँ,
0: जी।
1: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए ज़िंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज़ करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफ़ी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: नहीं थी जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी
1: बहुत बहुत बहुत सारी
0: जी।
1: बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफ़ी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
0: जी।
1: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले। तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
0: जी, वो गर्म
1: मैं
0: है।
1: गर्म है, मैं नाराज़ भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
0: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
1: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूँगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ लेना नहीं चाहता।

0: हूँ,
1: जी
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ।
1: अरे हाँ
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। माँ मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहाँ से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह
0: यूनियन था
1: हाँ वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही उस
0: पानी बन के
1: दाम्पत्य
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी ये सबसे बड़ी बात है जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह उनकी
0: मतलब
1: शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: ही।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, लाइक जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना? ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे,
0: थे
1: वो सब पता चलने लगा।
0: जी।
1: और खैर, वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया,
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह वो
1: पिता की
0: रहे
1: तरह।
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई
0: जी
1: स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने
0: लिखाई
1: की
0: थी
1: शक्ति,
0: जी बिल्कुल,
1: वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण।
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर
1: जी
0: दिखाया।
1: जी
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई, मतलब मेरे ताऊ जी, वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू, उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे, वो वहाँ पर रोज़ ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल, भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई,
0: जी
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
0: मतलब स्व
1: जानबूझ के नहीं
0: प्रेरित
1: हुआ।
0: हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
1: हाँ
0: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
1: हाँ
0: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए
1: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी।
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे। हाँ, तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ,
1: और
0: तब
1: फिर
0: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
1: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके

0: वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई,
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान।
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त,
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी? आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
1: जी जी
0: ये यही
1: जी
0: कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी,
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ,
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां से
0: हुआ।
1: वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज
1: जी
0: हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं, और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। इसमें आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स कल नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। ये संवाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 181 करोड़ लाख रुपए की राशि के सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर अकोदिया सुंदरसी और पोचानेर के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है नेट बैंकों के उपयोग में सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखें खास ख्याल पर। दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने और समाज में तंबाकू से जुड़ी समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। इस दिन को मनाने की पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सन 1987 में की गई थी। दोस्तों, तंबाकू का सेवन आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसमें मुख्य रूप से धूम्रपान, पान मसाला, सिगरेट आदि शामिल हैं। तंबाकू का सेवन किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन युवाओं और

और किशोरों में इसका प्रचलन अधिक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तंबाकू के सेवन से शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सबसे आम बीमारी फेफड़ों का कैंसर है, जो कि तंबाकू सेवन करने वालों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा हृदय रोग, दांत और मसूड़ों की समस्या, अस्थमा, उच्च रक्तचाप और पेट संबंधी रोग भी तंबाकू के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, तंबाकू का धुआं केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सरकारें, गैर सरकारी संगठन, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन रैली, सेमिनार, जागरूकता अभियान और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में छात्र छात्राओं को तंबाकू से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका संदेश पहुंचाया जा सके। दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और देश के लिए मूल्यवान योगदान दे सकता है। तंबाकू से दूरी बनाकर हम न केवल अपनी सेहत बचा सकते हैं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण भी स्थापित कर सकते हैं। साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन और समाज की सुरक्षा की याद दिलाता है। तंबाकू से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी सेहत, परिवार और समाज की भलाई के लिए इस हानिकारक आदत से पूरी तरह बचना चाहिए। यदि हर व्यक्ति तंबाकू से बचता है, तो समाज स्वस्थ, मजबूत और खुशहाल बन सकता है। इसलिए हमें इस दिवस का महत्व समझना चाहिए और इसे जागरूकता और परिवर्तन का अवसर बनाना चाहिए। आइए साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। अब लोग घर बैठे ही बिजली बिल जमा कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तथा खरीदारी भी कर सकते हैं। इन सभी सुविधाओं में नेट बैंकिंग का विशेष महत्व है। नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक से जुड़े अधिकांश कार्य बिना बैंक जाए आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी अर्थात ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। साथियों नेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। लोग किसी भी समय अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और विभिन्न प्रकार के भुगतान कर सकते हैं। परंतु यदि उपयोगकर्ता थोड़ी भी लापरवाही करता है तो साइबर अपराधी उसका बैंक खाता खाली कर लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ऑनलाइन सुरक्षा के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग कई तरीकों का उपयोग करते हैं। वे नकली कॉल, फर्जी वेबसाइट, ईमेल, मैसेज या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं। साथियों कुछ लोग लालच देकर लिंक भेजते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही व्यक्ति की सारी निजी जानकारी चोरी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नेट बैंकिंग का सुरक्षित उपयोग करने के लिए मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हो। जन्मतिथि, मोबाइल

नंबर या सरल शब्दों को पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। साथियों, समय समय पर पासवर्ड बदलते भी रहना चाहिए। इसके साथ ही मोबाइल में स्क्रीन लॉक और बैंकिंग ऐप में सुरक्षा सुविधाएं चालू रखनी चाहिए। साथियों, सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई का उपयोग करके नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते। साइबर अपराधी इन नेटवर्क के माध्यम से आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। हमेशा अपने निजी और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग कार्य समाप्त होने के बाद खाते से लॉग आउट करना अवश्य चाहिए। साथियों, आजकल OTP फ्रॉड बहुत सामान्य हो गया है। बैंक हमेशा ग्राहकों को चेतावनी देते हैं कि OTP किसी के साथ साझा न करें। OTP, ATM पिन और पासवर्ड पूरी तरह गोपनीय होते हैं। यदि किसी व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर भी इन्हें पूछे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऐसे फोन कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करते। साथियों, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो उसे तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए और साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समय पर कार्रवाई करने से नुकसान कम हो सकता है। साथियों, सरकार और बैंक भी लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। दोस्तों, नेट बैंकिंग आधुनिक जीवन की एक उपयोगी सुविधा है, लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता हमें बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखें खास ख्याल पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की जनता से 7 प्रमुख अपील की गईं, जिनको मानना हमारा दायित्व है। दोस्तों उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को कहा, इसके लिए आप निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें। दोस्तों सोने की खरीदारी ना करें, देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखने के लिए ऐसा करें। सोना विदेशों से मंगाया जाता है जिसे आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च होगी, इसलिए अपील की गई है सोना नहीं खरीदें। दोस्तों उन्होंने कहा विदेशी यात्राएं ना करें, अगले एक वर्ष तक इससे बचें ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। साथियों स्वदेशी अपनाएं, वोकल फॉर लोकल को अपनाने को उन्होंने कहा है। दोस्तों खाने की तेल की खपत घटाएं, क्योंकि तेल का ज्यादा उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। साथ ही विदेशों से तेल मंगाने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। प्राकृतिक खेती अपनाएं, कृषि क्षेत्र में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती और जैविक खाद की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों इन सभी बातों का हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी विदेशी मुद्रा की बचत करनी है। दोस्तों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का, आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर चर्चा करने का। साथियों, भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ परिवार, संस्कार और रिश्तों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में माता पिता को भगवान के समान सम्मान दिया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का संदेश हमें यही सिखाता है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों, वास्तव में माता पिता का सम्मान ही हमारी संस्कृति का आधार है। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। वे हमें जन्म देने के साथ साथ जीवन जीने की सही शिक्षा भी प्रदान करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी खुशी के लिए वे अनेक कठिनाइयों और त्यागों का सामना करते हैं। दोस्तों, भारतीय परंपरा में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा करके आदर्श प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के आधुनिक युग में भौतिकवाद और व्यस्त जीवन शैली के कारण कई लोग अपने माता पिता को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन हमें हमारे माता पिता का ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यस्ततम जीवन में समय निकालकर कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए। यह हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, माता पिता ने जिस प्रेम और समर्पण से हमारा लालन पोषण किया है, उसी भाव के साथ हमें भी उनके साथ रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, माता पिता का सम्मान करने से परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनी रहती है। जिन परिवारों में बड़ों का आदर किया जाता है, वहां बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। हमें उनके विचारों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, कठिन समय में उनका साथ देना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वही हमारे लिए

महत्वपूर्ण हैं। सच्चे सम्मान का वे प्रतीक हैं। हमें कभी भी उनसे कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और यही हमारी सभ्यता की पहचान भी है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए अब आपके दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था।
1: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए तुम मिले फिल्म का गीत KK की आवाज़ में। शब्द रचना सईद कुरैशी की है और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आपके लिए एक सूचना। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे, तो देर मत कीजिए और आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करिए। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक ही आप भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे केके की आवाज़ में नीलेश मिश्रा का लिखा गीत। संगीत दिया था एमएम केरवानी ने और फिल्म का नाम था मक्खी। लीजिए अब सुनिए राजशेखर का लिखा गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तनु वेर्स मनु।

अभी आप फिल्मी नगमे सुन रहे थे मीडियम वेव पर। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपके लिए एक सूचना। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में

उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे आज और कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, अनुगूंज 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रमों के अंतर्गत सुर्खियों में रात 8 बजे और 8:15 पर डगर विकास की, देशभक्ति फिल्मी गीत अब से कुछ देर बाद यानी 6:10 पर, 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं सुधा मिश्रा। सुगम संगीत 6:45 पर कलाकार हैं कीर्ति राजपूत। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का नियमित कार्यक्रम होगा कृषि जगत। इसमें आप सुनेंगे श्री हेमंत सोलंकी के साथ ली गई भेंट वार्ता, नशा मुक्त भारत अभियान। ये थे हमारे आज के कार्यक्रम और अब प्रस्तुत है हमारे कल के कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित विश्व दर्पण कल प्रातः 10:10 पर, कल रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और पब्लिक स्पीक 9:30 पर, कल प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आईना क्षेत्रीय एकांश भोपाल का योगदान, आजकल 6:40 पर और 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले किए जाएंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल प्रातः 6:05 पर, 6:30 पर चिंतन श्री रामचरित मानस कांड, 6:35 पर कृषि समय की, 6:45 पर, इसमें कल का विषय है इस समय की किसानी।

कल प्रातः 9 बजे कार्यक्रम लोक रसधार में हमारे कलाकार हैं हेमराज चढ़ार और रेवा राम विश्वकर्मा। वंदे मातरम गौरव गान की 1:30 10:05 पर दिन में 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम की सभा आरंभ होगी आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6 बजे। 6:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कल हमारी कलाकार हैं शोभा भट्ट। कल शाम 7:21 पर किसान भाइयों का नियमित कार्यक्रम होगा कृषि जगत। इसमें कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक के अंतर्गत जैविक खेती हेतु आदान प्रबंधन इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर SB अग्रवाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर कमला शंकर का गिटार पर बजाया राग यमन आप सुनेंगे रात 10 बजे और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन रात 10:30 पर। ये थी हमारे आज और कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये

वीर जारा लीजिए, सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा मजुमदार की आवाज़ में। शब्द रचना जावेद अख्तर की है।

0: अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: श्रूयंताम् प्रवाचकः ललित मोहन तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमंत्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिकपेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेबफलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिकशक्तिं दक्षिणपूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे 6-7 शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः 3 ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्मऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्तमात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात् रक्षण प्राप्तुम् आमपन्नम्, तक्रम, सत्तुपेयम, बेलपन्नम, पानकम, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभव निहित अस्ति।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीडा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्याम् प्रतियोगितायाम् प्रायः 8 क्रीडकाः भागम् गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिंदर वीर सिंह तथा अनिमेश कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्रसमूहे सम्मिलितुं तथा अवकाशकालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षणसम्बद्धस्य लघुचलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेन्स अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैवविविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणिः अद्य उक्तवान् चिन्तने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुखरक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरैः सह संवादे जनरल सुब्रमणिः अवदत् यत् सशस्त्रबलानि राष्ट्रहितसंरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालनसम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसङ्कल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक प्राङ्गणे प्रमुखाय रक्षाध्यक्षाय गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानः प्रदत्तः। तेन राष्ट्रिय युद्धस्मारके पुष्पाञ्जलिरपि समर्पिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तं यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑन मार्क पोर्टल इत्यस्यान्तर्गताः ये दोषाः अधुना सार्वजनिकरूपेण आगताः तेषां विषये सा सावधानतया निरीक्षणं करोति। सामाजिकमाध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे CBSE उक्तवान् यत् विविधसर्वकारीयसंस्थानां तथा भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानां सैबर् सुरक्षाविशेषज्ञानां दलं गतदिनेषु एतासां प्रणालीनां सुदृढीकरणाय तथा तन्त्रांशं सुरक्षितुं नियुक्तम् अस्ति। CBSE अपि सूचितवान् यत् अभिज्ञाताः दोषाः नियन्त्रणाधीनाः कृताः, सहैव अन्यासां सम्भावितानां त्रुटीनां निवारणार्थं गभीरा समीक्षा क्रियते। एडमिरल कृष्णस्वामीनाथन् अद्य नौसेनायाः 27वें प्रमुखत्वेन पदभारं स्वीकृतवान्। असौ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्। एडमिरल स्वामीनाथेन उक्तं यत् नौसेना समाह्वानपूर्णे जटिले अनिश्चिते च वातावरणे सक्रियरूपेण कार्यं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति। सा अवदत् यत् नौसेनायाः आधुनिकीकरणं क्रियते, येन उच्चतमस्तरस्य युद्धक्षमता सुसज्जिता भविष्यति। अस्मिन् अवसरे निवर्तमानः नौसेनाप्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी देशस्य नौसेनायाः नेतृत्वं गौरवपूर्णम् अभवत् इति अवदत्। सः प्रोक्तवान् यत् पश्चिमेशियायाः वर्तमानस्थितेः मध्ये भारतीयनौसेनायाः प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता च अक्षुण्णा एव स्तः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवोचत् यत् अमेरिका ईरानेन सह परमाणुसन्धेः सन्निकटः वर्तते, तथापि तेन सञ्चेतितं यत् यदि संवादो विफलः भवेत् चेत् सैन्यकार्याचरणस्य विकल्पः अपि तत्परः स्यात्। श्रीमता ट्रम्पेण उक्तं यत् ईरानाय कदापि परमाण्वस्त्रनिर्माणानुमतिः नैव प्रदास्यते। तेनाश्वासितं यत् सन्धिः जाते सति होर्मुज जलडमरू मध्ये इत्येतत् शीघ्रम् उद्घाटयिष्यते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति श्रृंखलायाः निर्णायकस्पर्धा भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन विजिता। निर्णायकस्पर्धायां भारतीयदलेन इण्डोनेशियायाः मोहम्मद शोहिबुल फिक्री फजर अल्फियान इत्यनयोः युगलम् 18-21, 21-17, 21-16 इति अंकांतरालेन पराजितम्। IPL क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां

0: निर्णायकस्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणे भविष्यति। क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धाया आरंभ सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हमारी कलाकार हैं सुधा मिश्रा।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज हमारी कलाकार थी सुधा मिश्रा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार हैं कीर्ति राजपूत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए विजय अतीत का लिखा ये गीत।

आकाशवाणी जबलपुर से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और इसमें आज हमारी कलाकार हैं कीर्ति राजपूत। लीजिए अब सुनिए जगदम्बा प्रसाद त्यागी के लिखा ये गीत, स्वर कीर्ति राजपूत का है।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने कीर्ति राजपूत के स्वर में कुछ गीत और भजन सुने। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपके लिए एक सूचना। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपके लिए लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नामांकन ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मद्दी टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और 82183263866 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल

0: 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
2: दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला और गौशाला के लिए 3-4 प्रकार जो पंचायत गौशाला खोलती है गौशाला में वहां मदद कर रहे हैं। नगरी निकाय में पहले पिंजरा पुल खड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरा पुल खड़क बनाने की जरूरत नहीं, गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क न पहुंचा देता तो कोई बात नहीं, कोई गौशाला नगरी निकाय जहाँ नगर निगम भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर ग्वालियर में तो 9,000 किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साक्षी के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति मध्यप्रदेश से हस्ताक्षर लीटर प्रति दिन का था उसको बढ़ा करके 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ा करके जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जा करके हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए।
0: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी, बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
4: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
4: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
5: मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। किसान भाई अब सुनेंगे अपना नियमित कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत सुनवारे सबै किसान भैया भौजी बिन्ना जिजी हरन खँ तुलसा बिन्ना की राम राम। हाँ तो भैया हरो, गर्मी को मुझको बचाओ से आप और तो रह रहे हो, और टेम टेम पे मोड़िया मोड़ियन की छुट्टी भी हो गई है, मौज मस्ती तो हो ही रही है। कुनू तो नाना नानी के थे छुट्टी मनावे जात हैं, कुनू तो देखो काकी की नातिन का का कह रहे हैं कि नातिन सोई उनके घरे आई है। बेजा उद्यमी रोज दादी के कहते हैं आज जो कहानी सुनाओ कल जो खेल खेलो, तो कक्का काकी तो मजे से ओई के संगे लगे रहते हैं टीवी मोबाइल से दूर। मानो काकी को जमाना तो ऐसो हतो कि लूडो शतरंज गेंद गिप्पी लुका छिपी कुर्सी दौड़, मानो सबरे घरन में काकी ने उहे सब सिखा दो। अब मोड़ा मोड़ी तो आए उन्हें तो बड़ो अच्छो लगत है, कोनो तो मौसी खेते गए हैं, कोनो दादी खेते अपने गाँव आए हैं। अब सब छुट्टियां मनावे को टेम तो अभी चल रहा है, सब अपने अपने कहूँ न कहूँ जात हैं। अब पुराने लोगन को पुराने खेल तो अच्छे लगते ही हैं और अच्छो भी लगा था। भैया आज तो सब के काकी ने उम्दा कहानी सुनाई। उनने कही कि बताओ मालवा साम्राज्य की महारानी कौन हती, तो चिंकी ने कही अहिल्याबाई होलकर। फिर चिंकी ने सबके बताओ भारतीय इतिहास की ऐसी महान वीरांगना हती जिनने अपने साहस बुद्धिमत्ता न्यायप्रियता से पूरे देश में एक अच्छी उम्दा पहचान बनाई उनने। और तो और महाराष्ट्र के चोड़ी गांव में आज के दिन 31 मई 1725 में उनको जन्म भाव हतो। साधारण परिवार में जन्म लेके अपने गुणों और कार्य से इतिहास में अमर भई, उनको ऊंचो स्थान भाव। मालवा साम्राज्य की महारानी बनी और अपने शासनकाल में प्रजा की भलाई को महत्व दाओ। इन्हें देश भर में मुद के मंदिर भी बनवाए, घाट कुआं धर्मशाला भी बनवाए, और काशी विश्वनाथ को मंदिर सोमनाथ मंदिर और मुद के धार्मिक स्थल में पुनर्निर्माण भी उनने कराओ। उन्हें शिक्षा धर्म और सेवा को बढ़ावा दो। तो चिंकी ने सबसे कही देखो इनने कितने उम्दा काम करे, और इनसे आज के टाइम में इनकी ईमानदारी सेवा परिश्रम से उनके कार्य पे अपन चलें, उनके मार्ग में चलें। हम सब तो भैया जितने जन हैं सबने मिलके आज सब संकल्प भी लाओ कि हम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को अपने जीवन में अपने हैं और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका सोई निभाएं। सो उम्दा उनने सबने काकी ने चिंकी ने सबने संगी साथी ने मिलकर प्रतिज्ञा लई, भैया हरो अब आपकी बारी, का कहत हो जो रुद्रदत्त भैया अपने स्वराज के लाने कछु कह रहे हैं सुनो।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हे गर्ल्स, कांग्रेचुलेशंस, आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ तो भैया, कितने चले गए? आपने प्रण लाओ है, अच्छो काम करने हैं। देखो चिंकी तो अपने दादा दादी के ते आई है। काकी कक्का बेजा खुश हैं, पे कक्का को मोड़ा से परेशान है। अब आप के हो का होगा? काकी खुश, कक्का खुश, फिर काई की परेशानी? परेशानी तो ऐसी भैया हरो, उनको मोड़ा कमात तो बेजा है, पे शरीर ऐसो कि का बताइए। अब परों के रोज की बात हम बता रहे हैं कि परो रात को वे घरे नहीं आओ। घरे में सब कछु इते वेते सब लोगन ने देख डारो, सब परेशान हो गए, कहाँ चले गए। चिंकी ने झट्टी से नहे महे ढूंढत फिरत कक्का की आवाज़ लगाई। कक्का बाहर ही गए, सो कक्का खेत में गए। खेत में उनको मोड़ा पड़ो रहो, उन्हें बिल्कुल होश ना हो तो मोड़ा खे। अब कक्का परेशान, उन्हें सबरे गांव की आवाज़ लगाई तो पता चलो कि बेजा नशा करत है। फिन का कक्का तो रहे, संगे संगे सवरन ने फटकार लगाई। अब कक्का ने दो दिना से उहे निकरन नहीं दाओ, खाना पानी भी नहीं दाओ। फिन हम गए, चिंकी ने हमें सब कछु बताओ। सो हमने कक्का से कही, कक्का धूम्रपान मुक्त के लोग शोक से करत हैं, जैसे उनके फेफड़ा, कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, TB जैसे खतरनाक रोग हो रहे हैं। और धूम्रपान आज दिवस भी आए, और हमने जे ही प्रण लाओ है कि जौन भी धूम्रपान कर रहे हैं उन्हें उनको नशा छुड़ाने हैं, और नुकसान तो जो बेजा होता ही है। ऐसे में जितने नशा करवे वारे हैं सब जे ही आज संकल्प लें कि ना नशा करें न करन दे हैं। और चौपाल में भी हम जे ही बात लेके आए हैं, सो आप सुनो नशा मुक्त भारत अभियान। बता रहे हैं हेमंत सोलंकी भैया, और इनसे बतकाव कर रहे हैं अपने विपिन यादव भैया।
4: श्रोताओं नमस्कार। कहा जाता है नशा नाश की जड़ है, जिससे कि व्यक्ति और परिवार, समाज सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हमारी सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान का आरंभ किया है, और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया हुआ है श्री हेमंत सोलंकी जी को, जो कि समन्वयक हैं नशा मुक्त भारत अभियान जबलपुर ज़िले के। हेमंत जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: और हमारे श्रोताओं के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये नशा मुक्त भारत अभियान है क्या?
5: नशा मुक्त भारत अभियान ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक देश में सर्वे कराया था
4: जी।
5: उस सर्वे में 15 अगस्त 2020 को 272 जिले देश के आइडेंटिफाई हुए थे ज़्यादा नशे करने वाले। उसमें मध्य प्रदेश में 15 जिले जो हैं अत्यधिक नशे के उसमें पाए गए, उसमें एक जिला हमारा जबलपुर भी शामिल था। अच्छा। तो ये 15 अगस्त 2020 को शुभारंभ किया गया, और तब से हम लोग सभी विभाग के द्वारा मिल करके इसमें नशा मुक्ति पे निरंतर कार्य कर रहे हैं।
4: अभी आपने कहा हेमंत जी की सभी विभाग से मिल के हम इसमें कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से विभाग होंगे जो इसमें शामिल होंगे?
5: जी, इसमें मुख्यतः सामाजिक न्याय निसर्जन कल्याण और पुलिस प्रशासन है ना, और नार्कोटिक्स, ये मुख्यतः ये तो है ही, और साथ में जो महिला बाल विकास है, नगर निगम है, और उस शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग है, आंगनबाड़ी है, इनके सभी के माध्यम से और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि सबका समन्वय कर करके इस कार्य को हम लोग संपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं सार्थक रूप से। हमारे प्रदेश को, हमारे जिले को, जहां अत्यधिक नशा करने वाले पाए गए हैं, ये जो टैग लगा है इस टैग को हटाना है, ये हम लोग इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
4: तो ये नशा मुक्त भारत अभियान का जो क्रम है कार्य करने का, उसमें किस तरह से काम किया जाता है ताकि नशा मुक्त हो जाए एक क्षेत्र?
5: जी जी, उसमें सारे जगह मतलब स्कूल के बच्चों को भी इसमें आइडेंटिफाई करना है, बस्तियों में जाना है, नुक्कड़ सभाएं करना है, संगोष्ठियां करना है, चित्रकला प्रतियोगिता करके करना है, पुलिस प्रशासन है, किन्नर समाज है, हर वर्ग में जाकर के इसकी हमको ज्यादा से ज्यादा जन जागृति करना है। नशा मुक्त भारत अभियान की जो चिंता करी है भारत सरकार ने, उसमें उनका चिंता का मुख्य विषय यह है कि जो 18 वर्ष की आयु से 23 वर्ष 24 वर्ष की जो यूथ का आयु वर्ग आ रहा है और कुछ 14 से 16 वर्ष के बच्चे भी आ गए हैं, तो ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय भारत सरकार के सामने आया है। और उस चिंता को काम करते हुए कि सारी जगह में हमको इन बच्चों को टारगेट करना है कि ये यूथ जो है हमारा फंस गया है, तो मुख्यतः बात यह है कि जो 30% हमारे यहाँ नशा लोग कर रहे हैं, लेकिन 70% यूथ जो अभी हमारा बचा हुआ है, हमारे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है
4: जी।
5: ये जो 70% जो यूथ हमारा बचा है, इसको हमको बचा के रखना है। आप ये कल्पना करिए कि अगर ये 70% अगर उल्टा हो जाए तो क्या स्थिति होगी हमारे देश की। इसी चिंता के कारण भारत सरकार ने कहा कि ये जो खेप है 70% की, ये आगे ना बढ़ पाए, और ये कहीं ना कहीं जो मादक पदार्थों के आकर्षण फैशन में जो हमारा यूथ फंस जा रहा है, चाहे वो ग्रामीण अंचल का हो, शहरी अंचल का हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, जो इनके अंदर में जो बहुत चलन बढ़ गया है, इसके लिए हमको अत्यधिक जागरूकता फैलाना है। और बच्चों को ग्राउंड लेवल, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में ही इनको बताना है कि भयावहता इसकी कितनी खराब है ये मादक पदार्थों की, क्योंकि तमाम एजेंट हैं वो अपना काम करते हैं, इसको अपने प्रलोभन में फंसाते हैं बच्चों को, और बच्चे उस प्रलोभन में आ जाते हैं, और उस प्रलोभन में आने के बाद उनकी दुर्दशा बहुत होती है। शुरू में बच्चे जो है ना, यूथ से मैं कहूँगा कि आप ये शुरू में शौक के तौर पे लेते हैं, पर कब ये शौक दुख बर्बादी की ओर ये आप चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, इस गर्त में चले जाते हैं। इसीलिए नशे को ना कहो, हर वक्त ना कहो, और हर बार आपस में, हर वीक में, हर 15 दिन में कभी भी दोस्त चार मिलते हैं तो नशे के बारे में, दुष्परिणामों के बारे में आपस में हमेशा चर्चा करते रहो। जब आप चर्चा करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ से दूर हो जाएंगे।
4: ये तो बात रही हमारे आसपास के क्षेत्रों के हिसाब से, दूर सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तक आपकी अप्रोच है, वहाँ तक आपकी पहुँच कैसे?
5: ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास से ही हमारे शहर का विकास है। ग्रामीण का यूथ अगर हमारा खराब हो जाएगा तो हमारा सब कुछ डगमगा जाएगा। तो हम लोग ये फोकस करते हैं, और तमाम सरपंच हैं, सचिव है, तमाम ग्रामीण अंचलों में जाकर के जनपद के माध्यम से जो अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है
4: जी।
5: तो उस अवेयरनेस में गांव के बच्चों को मादक पदार्थों से दूर रखना, इसके लिए नुक्कड़ सभाएं करना, अधिक से अधिक उनके पास जा करके इनके बारे में बताना कि कोई शहर से आ करके कोई एक दो व्यक्ति अगर नशा करता हुआ आ गया मादक पदार्थों का, तो वो पूरी चैन बना लेगा, तो उस चैन को ब्रेक करना है। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने इस अभियान में बहुत अच्छा कार्य किया है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करी है, जिसके कारण इसकी जो ड्रग्स की जो सप्लाई चेन है उसको पुलिस ने ब्रेक किया है। हम तो एक जागृति तो फैला रहे हैं, पर जो सेलर हैं वो उनको भी डैमेज करना है, तो वो तो पुलिस प्रशासन का काम है, वो बहुत बखूबी कर रही है और उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है, जिससे कि आज इसमें क्या अन्य मादक पदार्थों की उसमें भारी गिरावट आई है
4: जी।
5: जो कि हमारा शहर एक हब बन गया था मादक पदार्थों का, अभी जब से 2020 से ये चालू हुआ है नशा मुक्त भारत अभियान, तो इसका एक सकारात्मक रिजल्ट आया है और हमारे जिले में इसकी गिरावट आई है, जिसकी समय समय पर हमारे कलेक्टर साहब मीटिंग्स देते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समन्वय हमारे शहर में चल रहा है
4: जी। जी, अच्छा इस अभियान के अंतर्गत प्रावधान क्या क्या होते हैं?
5: इसमें क्या होता है कि जो सभाएं करना है, जो भी प्रोग्राम्स करना है, उसके लिए सरकार अपना फाइनेंस की व्यवस्था भी कराती है
4: जी।

0: कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयरनेस हो पाएँ, उसके लिए वो फैसिलिटीज़ दे रही हैं और उसकी मॉनिटरिंग्स भी कर रही है। और दिल्ली से NMBA की जो टीम है, स्पेशल टीम, वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करती है, जहाँ जहाँ ये अभियान चल रहा है हमारे जिले में भी हर वर्ष आई हैं। और हमारा ज़िला पूरे देश में, कोविड का समय चल रहा था, लोग निकल नहीं पा रहे थे कार्यक्रम के लिए, हमने अरे जिले ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसकी रिपोर्टिंग उनके जो द्वारा जो आए, तो उन्होंने हमारे को थर्ड फोर्थ रैंकिंग से सीधे फर्स्ट तक पहुंचाया है। और हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो कम से कम हम ये आग्रह करते हैं कि हर सरपंच, हर ग्राम सचिव से, कि आप अपने गाँव को, एक गाँव को कम से कम नशा मुक्त बनाएं।
1: हेमंत जी, एक कड़ी होती है परिवार की, जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, खासकर नशा मुक्ति अभियान में।
0: हमारे यहाँ जो पहले कल्चर था साथ में भोजन करने का, वो हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है, ग्रामीण में भी, शहर में भी। तो मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि आप कम से कम सप्ताह में एक से दो बार कोशिश करें कि रात्रि भोज या दिन का भोज, जैसा भी आपको सूटेबल हो, परिवार के सारे सदस्य बैठ के भोजन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो बच्चा है आपसे आई टू आई कनेक्ट करके बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। वो कोई और परेशानी से पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि आपका समन्वय नहीं हो पा रहा है, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है। देखिए, सरकार अपना काम करती है, संस्थाएं अपना कार्य करती है, लेकिन परिवार एक मुख्य कड़ी है। परिवार को हम लोग भी जो कहते हैं फैमिली काउंसलिंग, तो हम लोग फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, जिससे हम उनको कैसे एडिक्ट हो गया है अगर बच्चा, तो परिवार का सहयोग कैसे प्राप्त कर पाए, और परिवार जो है उनके साथ एक मजबूती से खड़ा रहे, ना कि उसको धिक्कारे। तो उस दलदल में अगर बच्चा कहीं जाने अनजाने कहीं फंस गया है, तो उसे हमें निकालना है, उसे घृणा नहीं करनी है।
1: तो कोई बच्चा नशे में फंस जाता है, वहाँ आपका क्या योगदान होता है, आप किस तरह से उसको निकालते हैं?
0: देखिए, नशे में यदि अगर इनिशियल स्टेज में है, तो हम लोग उसको काउंसलिंग और OPD की व्यवस्था से ही दुरुस्त कर देते हैं, वो भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और दूसरा, यदि अगर मान लो कहीं ज़्यादा लिप्त हो गए हैं, एडिक्ट हो गया है व्यक्ति, तो हमारे डी एडिक्शन सेंटर है, अच्छा, ना, जो भारत सरकार की सहयोग से चलता है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता है, उनको पूरी निःशुल्क सुविधाएँ दी जाती है। तो मैं आग्रह करूँगा कि हमारे प्रदेश के, हमारे ज़िले के जो भी लोग हैं, अगर वो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ आएँ और हमारे केंद्र में इसका लाभ प्राप्त करें, और नशा मुक्त होकर के समाज के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करें, और अपना जीवन, अपने परिवार को खुशहाल बनाएं।
1: हेमंत जी, जो आपने राह दिखाई है, हम आशा करते हैं कि हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, हमारे समाज में ये जो नशा है, इसका नाश अवश्य होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
3: हाँ तो भैया, संदेश के पहलू अपन ने उम्दा से सुनो नशा मुक्त अभियान के बारे में, और हमने जानो मतलब हमें नशा नहीं करने आए, सरकार की जो ही पहल है सबके घर खुशहाल रहें, हंसी खुशी से अपनो जीवन बिताएं, नशा में कछु नहीं रखो आए, जीवन मिलो है भैया उम्दा से जियो, घरे में खावे पीवे के लाने नैया और नशा के लाने रुपया पैसा खर्चापन कर लेते हैं, समाज में घरे में इज्जत अलग खराब होता है, शहरी ग्रामीण युवा जे मादक पदार्थ के शौक के रूप में अपनी दुर्दशा कर लेते हैं, स्वस्थ जीवन सबसे बड़ी संपत्ति है, देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, देखो घरे में हंसी खुशी से उत्साह उल्लास से अपने जीवन को नई दिशा जरूर दें, नशा करवे के बाद कछु अच्छो नहीं लगा दिया, बस दिन दुनिया से दूर शरीर को नाश होता है, खुशहाल अपन के रहने हैं, अपने आप को नशा मुक्त रखने हैं, भागम भाग दिनचर्या में परिवार के संगे अपन के रहने हैं, आपस में एक दूसरे के संगे देख सुन के आपसी समझ से हंसी खुशी से अपन के रहने हैं, का गलत है का सही है ये बात को जरूर ध्यान धर रखें, परिवार में संस्कार और अपने परिवार को जरूर टेम दे और संस्कारों को जरूर अपनाएं, कैसे कि हर परिवार चाहत है कि हमारे घर के मोड़ा मोड़ू कछु मोड़ा मोड़ी हैं कछु अच्छो करें, हमाऊँ नाम रोशन करें, देश को नाम रोशन करें, पे नशा अगर कर रहे हैं सुबह कछु ना करें हैं, सो उन्हें समझाओ और उन्हें भी ध्यान दो चाहिए कि आज परिवार में जोन इज्जत है अपने माँ बाप की इज्जत है उन्हें हम ना उछालें, नशा से दूर रहें, अपनो जीवन उम्दा से जिए, जीवन को भरोसा नहीं है भैया कब का हो जे है, जितो जीवन मिलो है उम्दा से बिताएं, मन पंछी कब उड़ जे है पतो ना लगे है,

हाँ तो भैया, जगदीश प्रसाद भैया ने बड़ो उम्दा लोकगीत सुनाओ। और भैया, मन पंछी उड़ जाने उनने जो ही कहो कि अपनो अपनो सबको ध्यान रखने हैं, कोनो काम ऐसो नहीं करने आए जैसे हमें अपने आप में कुंठा हो, और नशा से तो अपन के दूर रहने हैं और दूर रखने भी हैं। तन तन से मोड़ा मोड़ी हैं उन्हें भी अपन के सिखाओ नहीं, कैसे कि वे आजकल युवा हैं, वे नशा के शिकार हो रहे हैं। सो उन्हें अपन के सिखाओ नहीं, उन्हें माहौल से दूर रखने हैं। उम्दा उन्हें पढ़ाई लिखाई करके बड्डो आदमी बनाओ। भैया, अपन औरे गांव देहात के हैं, अपन औरन के जो ही सब शिक्षा मिली है कि अपन औरे घर में जोन संस्कार अपने बड़े बुजुर्ग देत हैं, उन संस्कारों को अपन अपनाएं। अपने मोड़ा मोड़ी हैं उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उम्दा से उन्हें बताएं कि का सही है का गलत है। जब उनके दिमाग में जब पड़ जाए है सो कछु भी सामने धर दो, वे कभू ना उहे आज में हैं और ना वे कहू बिगड़ हैं। तो भैया, अपन के जेई ध्यान धर रखने हैं, अपने परिवार में ऐसो माहौल बनाओ कि परिवार के संगे उठे बैठे उम्दा से हंसी मजाक करें, पे नशा से दूर रहें। नशा जीवन को नाश करत है। भैया, आज नशा मुक्ति अभियान में भी हमने जाई जानो, हमारे चौपाल में जेई सब उम्दा बातें होती हैं कि आप पूरे उसे शिक्षा ले सकत हो। कोनो भी बात है, जानकारी है, हमारे चौपाल के माध्यम से आप ओरे तक पहुँचत है। और आप उन के लाने जे चौपाल तो लगते ही है, हमाओ आपको बोल बतकाओ भी उम्दा हो जात है। चिट्ठिया पतिया भी आप ओरे देन में कंजूसी कर लेत हो। हम तो देखा थे हमारे जितने भैया भोजिहारे हैं उनकी तो आ जाती हैं, फिर नए नए भैया हैं वे जुड़ तो लेत हैं, फिर चिट्ठिया पतिया दे में कंजूसी करत हैं। सो भैया, ऐसो ना करो, हमें भी इंतजार रहते हैं आप ओरन की चिट्ठिया पतिया को। और आप औरन के लाने हमारी चौपाल तो रोज ही लगत है, रोज नए नए कार्यक्रम भी आते हैं। आप औरन के का चहने हैं, आप औरन के लाने हमारी चौपाल में कौन सी आप और नई नई चीज़ें आप औरें सुन सको। सो आप अपनी चिट्ठियन पतियन के माध्यम से हमें ज़रूर बते हो भैया, हम आपकी चिट्ठिया पतियाँ अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। और अभी देखो कैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, पसीना से तर्र हो रहा है आदमी। इको कारण मालूम है कहाँ है, इको कारण तो जाई है, जगह जगह पेड़ कट गए हैं। सो हम तो जाई सबसे कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भैया अपने घरे में जितनी जगह है उतने उम्दा से पेड़ लगाओ, अच्छी छाया लो ऊखे और नमी बनी रहे, ठंडक रहे है, अच्छे उम्दा पेड़ रहे हैं। सो पेड़ से अपने मुद के फायदे भी हुए हैं, फल भी लग हैं, फल भी मिल हैं और अच्छी अपने के उमें ऑक्सीजन मिल है, शुद्ध हवा मिल है। और पहले देख लो जगह जगह पेड़ लगत थे, चबूतरा में सब बैठ के बोल बतकाव कर लेते, आज तो कोनों के पास टाइम नहीं है। सब जिहे देखो उहे अपने मोबाइल, अपने टीवी, अपने कंप्यूटर ई दुनिया में लगे हैं। ई दुनिया से दूर आओ भैया, अपनी दुनिया जोन हती वही दुनिया अच्छी हती। पेड़ पौधों के बिना तो जीवन भी नहीं है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, अपन के ई प्रदूषण के रोकने हैं। तो जे सब अपन मिलके कर सकते हैं। और अपने एते तो शुद्ध हवा मिलता ही है भैया, गांव की शुद्ध हवा आहा का कहने। देखो अपने लकड़ी कंडा तो अपने गाँव ही में हो जाते हैं, गैया हैं इतनी, अपने ढोर बछेरू हैं, उम्दा गोबर की खाद बन रही है और बढ़िया मुक्ते अपने अपन लकड़ी भी अपने घर की हो रही है। गोबर से अपन आजकल गोबर के कंडा बन रहे हैं लकड़ी वाले, सो उमें भी अपने खेती किसानी के संगे संगे अपन और आज ईंधन की कोनो समस्या अपने ते तो नहीं है। शुद्ध हवा भी अपने ते अबे तक तो ना आती, पर अबे प्रदूषण बढ़ रहा है। सो अपन इखे रोक सकत हैं अपने घरे में खेप बिरछा लगा के, और बिरछा से उम्दा शुद्ध हवा पानी वातावरण भी उम्दा रहता है, इतनी गर्मी ना हुआ है जितनी अबे हो रही है। सो भैया, मिल के उम्दा से सबके रहने हैं। और अपन ओरे तो एक ही लाने अपनी चौपाल भी लगाते हैं कि भैया भोजी हरे आपको जोन भी समस्या है, अपनी समस्या आप ओरे चिट्ठिया पतिया के माध्यम से भेज दो, तो हम आपकी समस्या के अपने चौपाल के माध्यम से दूर करें। सो आपको बोल बतकाओ, हम आओ बोल बतकाओ ऐसे ही होत रहे। और संझबरिया को टेम हो गौ है, अब भोजी हरण को टेम हो गौ है कि बिदिया लेस बे किलाने जा रही हैं। सो भोजी जाओ, शाम की सब्जी भाजी का बनने हैं जे भी चिंता रहत है। सो चिंता ना करो, जोन अपने घर में खेत किसानी की आई है वो ही बना लो।
और गर्मियन के दिन है तो हल्को हल्को खाओ। और हम भी जा रहे हैं, फिर आपोरहन से हुए मुलाकात। तब तक के लाने तुलसा बिन्ना की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना नियमित कार्यक्रम कृषि जगत मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण।

0: और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: अशोक जी। मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
1: देखिए, महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने की वो थी मौसम को लेकर, कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और इसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में किससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए। और जो हमारे पेयजल हैं या जैसे हमारे देश में आम के बारे में, शरबत के बारे में, दक्षिण भारत के, तो उन सब की भी चर्चा की। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो नए कीर्तिमान हुए हैं, उनकी भी चर्चा की। उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत जो ताम्रपत्र वापस किए गए, और इसी तरह से वही नीदरलैंड की यात्रा के दौरान हुए फिर, तो इस तरह के उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे। फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। लेकिन हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और काफी लंबी समय तक बातचीत की। तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया।
0: और सबसे पहले खेलों की ही बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों की हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने पहले अभी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
1: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं। और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आई तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में, समाज हित में जब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं और जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है और खासतौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ उसमें 800 एथलीटों ने भाग लिया जो देशभर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उन्होंने गुरिंदर वीर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना, कुलदीप कुमार, इनके अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की। और 2 एथलीट हम बात करेंगे तो गुरिंदर सिंह और अनिमेश, इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे, बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
0: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
2: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता

0: राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी विरासत किस तरह से लौटा सकते हैं। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे तो वहां पर उनकी जो बातचीत हुई और उसमें विशेष समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के भी मौजूद थे, और उस विशेष समारोह में जैसा अभी हमने सुना, चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी गई, एक विशेष कार्यक्रम हुआ, और उसमें देश विदेश से लगातार अब संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी। और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं साझा की, इनमें से 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से, जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर हैं, ये भारत में जब वापस आएंगी तो भारत की धरोहर, संस्कृति, विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
2: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो, या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है, तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और आज के युवाओं ने भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
0: आज एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहां पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी, और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची, और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया, और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया, तो एक जीवन जो है उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है, और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का ये संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव हैं। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम डगर विकास के। विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुँच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हुई आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता आर्जरिया।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोरा अकादमी भी गए थे, जहां पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद, एजुसेट के बाद, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में, कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को, स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को, मान लो वो अनुपस्थित है, तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से, तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बाद का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास साधन है, ना उनके पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है, उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए

0: हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं और हर विषय का हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज वैल्यू एडिट कोर्स बताया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है। प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है। उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित, तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, GI टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में BAC के वैल्यू एडिट कोर्स के टीचर्स नहीं हैं या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
1: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है, इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं। इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं?
0: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, PME विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले हैं, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर खोज सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे IIT है, JEE है, NEET है, PSC है, सारी भाषाओं में बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। PME विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
2: श्रोताओ, PME विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। PM ई विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के PME विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
3: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को TV, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो IT मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है। दीक्षा पोर्टल में स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और NCERT द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तब हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं, NCERT की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।

0: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एमए के छात्र सौरभ द्विवेदी।
1: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे, जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, दो तीन लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही, तो उसमें हम उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है, जिसको पढ़ने में और समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
0: सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और जो नए विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहें या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
1: जैसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉगिन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे क्लियर कर सकते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
1: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉगिन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉगिन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है कि हम कहीं भी कभी भी पढ़ लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
0: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
1: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी है इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है, स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है, और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हों, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
0: श्रोताओं, पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़ें और अपने सपनों को पंख दें। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

मीडियम वेव 374.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे सईद कुरैशी का लिखा गीत, प्रीतम के संगीत निर्देशन में, आवाज़ केके की थी और फिल्म का नाम था जन्नत वो लम्हे। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत केके की ही आवाज़ में। शब्द रचना नीलेश मिश्रा की है, संगीत दिया है प्रीतम ने।

हैप्पी भाग जाएगी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, रचना सोहेल सेन और अल्तमश फरीदी की है और आवाज़ मुदस्सर अजीज़ और सोहेल सेन की है।

अभी आप फिल्मी नगमे सुन रहे थे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा

0: सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए AI युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी

0: स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheet.

0: is Delhi.
1: Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
2: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला,

0: संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
1: जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीस फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
2: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना राधा।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। धाम पर बैठकर तमाशा देखना आसान पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। तेरे को बताऊं एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
2: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
1: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है। यानी उस वक्त से काम कर रही हूँ जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
1: जैसा कि आप सब जानते हैं मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोती कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
5: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही

0: खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
2: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है कभी भारत की बदलती आवाज कभी भारत की बदलती सोच है कभी भारत का बदलता अंदाज प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है है प्रसार भारती भारत का बदलता आज
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: एक्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत राम चंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

जटिल कर्म पथ पर थर थर थर कांप लगे रुकने पग, जटिल कर्म पथ पर।

0: बांसुरी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।
2: बोल कहीं बोल यहाँ तो न बोल श्यामा,

संस्कृति के उपकरण बदल गए, बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण, विरह कह इसे न विरह।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by श्री अस्नापुर एर्रैया in the रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया next presents सामगान प्रियकरम, a composition of गुरु सूरजानंद in राग कीरवाणी set to मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashvani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया।

0: जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratanlal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi.